0: 160 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
0: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
0: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
2: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
3: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
2: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
3: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
2: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
3: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
2: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
3: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: कहा आपका ये बजा ही सही के

0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मारपीट और आर्म्स एक्ट के 4 आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा। अलग अलग मामलों में 19 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 तारीख को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत, जोर शोर से चल रही है तैयारी। कई शराब तस्करों को आज भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज में न्यायालय ने हथुआ थाना कांड संख्या 1/2025 हत्या का मामला मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में सुनवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को सजा हुई है उसमें सागर पटेल, पिता महेश पटेल, साकिन मनी छापर, थाना हथुआ, जिला गोपालगंज को 6 महीने कारावास और धारा 118(1)(BNS) में 3 वर्ष कारावास तथा ₹5,000 का अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त कारावास और धारा 109(BNS) में 10 वर्षों का कारावास एवं ₹30,000 का अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का साधारण कारावास, तो वहीं आर्म्स एक्ट में 5 वर्षों का कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड। इसके अलावा अमन चंद्रवंशी, पिता प्रताप चंद्रवंशी, ये भी मनी छापर के हैं। राहुल सिंह, पिता चंदेश्वर सिंह, ये सुहागपुर के हैं। आकाश पटेल, पिता वीरेंद्र पटेल, ये भी सुहागपुर के हैं। सभी हथुआ थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। इन लोगों को 115(1)(BNS) में 6-6 माह का कारावास और धारा 118(1) में 3-3 वर्षों का कारावास और ₹2,000 का अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 109(BNS) में 10 वर्षों का कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड, अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3-3 माह का साधारण कारावास और आर्म्स एक्ट में 5 वर्षों का कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों को जब सजा सुनाई गई तो पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन आरोपियों पर 2025 में मामला दर्ज हुआ था और तभी से अदालत में सुनवाई चल रही थी और बताया जा रहा है कि लगभग 16-17 महीने के ही सुनवाई के बाद अदालत ने इन आरोपियों को सजा सुना दिया। अलग अलग मामलों में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से जिन 19 लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि NDPS एक्ट, शराब के साथ गिरफ्तारी और शराब के नशे में भी गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज अलग अलग जगहों से उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस की एक टीम ने मीरगंज क्षेत्र के एक डंगा चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करते हुए आशीष कुमार और सूरज कुमार यादव को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी भोरे थाना क्षेत्र के हुसैपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर बिहार में सप्लाई करने के लिए आ रहे थे, तभी एक डंगा चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के नया टोला दलिया गांव का रहने वाला कंचन शाह का पुत्र संजय शाह बताया जा रहा है। इसके पास से भी पुलिस ने शराब बरामद किया है। इसके भी शराब को जब्त करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9/5/2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुलहनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भू अधिग्रहण, राजस्व एवं मनरेगा तथा बिजली एवं पानी बिल, वाणिज्य कर, आयकर, वन अधिनियम के वाद, रेलवे दावा, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अपील आदि से संबंधित मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह का वाद कोर्ट में चल रहा है तो आप सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में इसका निष्पादन करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने संबंधित अदालत में या लोक अदालत कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कुचायकोट के मलही गांव के पास उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब से भरी हुई टेम्पू को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इसके अंदर से 63 लीटर शराब मिली है। इस टेम्पू में बक्सर जिला के ब्रह्मपुर चखनी गांव के रहने वाले राजू कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से टेम्पू में तहखाना बनाकर शराब छुपाकर ला रहा था। तभी पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने कुचायकोट के मलही क्षेत्र में इसे दबोच लिया। गैस को लेकर आज जिला प्रशासन के तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें बताया गया कि गोपालगंज जिला के सभी तीनों एजेंसियों के सभी गोदाम पर मिलाकर कुल 20,667 गैस सिलेंडर आज उपलब्ध थे। जिला पदाधिकारी के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में 26 विक्रेता IOCL के हैं और इनके पास 10,793 गैस सिलेंडर हैं। BPCL के 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 4,428 गैस सिलेंडर हैं। तो वहीं HPCL के 12 विक्रेता हैं और इनके पास 5,446 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। मवेशी तस्करों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी श्रीपुर थाना की पुलिस ने 12 मवेशियों को बरामद किया है और 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनकी एक पिकअप गाड़ी को जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर यह अभियान लगातार चल रहा है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने मिश्र बतराहा के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते हुए 1 दर्जन मवेशियों को बरामद किया और इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी पवन कुमार पिता शंभू कुमार जो पेउली थाना मीरगंज का रहने वाला है और दूसरा जोखन अंसारी पिता जयबाद अंसारी, यह खैरटिया थाना मीरगंज का निवासी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट पुलिस ने न्यायालय के द्वारा निर्गत अस्थाई वारंट के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दीनानाथ लोहार उर्फ धर्मराज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह कुचायकोट के खजूरी गांव के गौरी शंकर शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा कुचायकोट पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी पीयूष कुमार को भी गिरफ्तार किया। यह कुचायकोट के भाटवा रूप निवासी राजकिशोर यादव का पुत्र बताया जा रहा है। साथ ही एक महिला को भी कुचायकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इन पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आज भी विष्णु सुगर मिल में श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने मिल के श्रमिकों के साथ बैठक की। अन्य प्रखंडों से आए श्रमिकों का भी स्वागत किया गया और सभी श्रमिकों को कानून के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी गई। श्रम विभाग के अधिकारियों ने अनुरोध किया कि सभी श्रमिक अधिक से अधिक श्रमिकों को कानून से संबंधित जानकारी साझा करें और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है इसकी भी जानकारी श्रमिकों को दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram के चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो रिमझिम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मारपीट और आर्म्स एक्ट के 4 आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा। अलग अलग मामलों में 19 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 तारीख को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत, जोर शोर से चल रही है तैयारी। कई शराब तस्करों को आज भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
6: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल 9939721308।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

थोड़ा सफर का मजा लीजिए हुजूर।

0: ए, क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
5: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल, CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
6: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
5: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
6: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए।

0: फिब्रुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388849।

0: रामू
1: काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399-66999।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही से बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
5: यूं ही तुम मुझसे बात।

0: अरे बाप रे,
1: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: गन्ना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है, जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सुरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले दो दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर तीन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
5: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है। और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त तो प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों के पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: एडमिशन फ्री
7: कहाँ पर?
8: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
7: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
8: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
7: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
12: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
14: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
16: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
16: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
16: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
18: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
19: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
18: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
19: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
18: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
19: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉलर्स 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 1844।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग। वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले दो दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 6 या 7 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए हैं। वहां वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल पटना में मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि शिविरों में प्रखंड, अंचल और थानों से जुड़ी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना का कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान प्रदेश भर में 48,50,848 लोगों ने स्वगणना प्रपत्र भरे हैं। इस मामले में पहले स्थान पर वैशाली जिला रहा, जहां 5,86,220 परिवारों की सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। दूसरे स्थान पर गया जिला रहा, जहां 4,95,331 लोगों ने स्वगणना पत्र भरा है, जबकि गोपालगंज 3,06,491 स्वगणना पत्र अपलोड कर तीसरे स्थान पर है। पटना जिला 2,38,750 स्वगणना पत्र भरकर चौथे स्थान पर है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से 1 मई के बीच स्वगणना पत्र भरे गए थे। स्वगणना की समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 मई से राज्य में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। श्री निशांत 11 बजे पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से सद्भाव यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा की औपचारिक शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से होगी। इस दौरान उनके साथ जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
1: माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत को जनता दल की केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीट के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। प्रदेश के सभी 927 राजस्व न्यायालयों को आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम संबंधित जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के आधुनिकीकरण से न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ ही दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी आसान होगा। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए जारी निर्देश में कहा है कि प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पटना जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही 3 दिनों के अंदर छात्रा की माता का बयान सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करवाने को भी कहा है। अदालत ने प्रत्येक 14 दिन पर शपथ युक्त प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश सीबीआई को दिया है। विशेष अदालत ने छात्रा के परिजनों को 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के प्राणपुर में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्णिया के कस्बा और ढेंगरा घाट में 106 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।
1: दिनांक 3 मई, राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद समेत दक्षिण पश्चिम भागों में तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष में नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर की को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में T20 पुरुष लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कल अलग अलग स्थानों पर खेले गए मुकाबले में खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर और अररिया की टीमों ने जीत दर्ज की। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य U19 शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब पूर्णिया के आर्यन कुमार ने जीता, जबकि बालिका वर्ग का खिताब मुजफ्फरपुर की दिशा कुमारी ने जीता है। जमुई के मलयपुर में 25 मई से बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बिहार खो खो संघ के सचिव नीरज कुमार पप्पू ने दी है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच आज दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। सीवान जिले के बढ़हड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सोनू यादव मारा गया है। उस पर 25,000 रूपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों पूर्व MLC मनोज सिंह के भांजे और उनके बहनोई पर गोलीबारी की घटना में भी सोनू यादव वांछित था। गौरतलब है कि इस घटना में पूर्व MLC के भांजे की मौत हो गई थी। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव में JCB से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर कैमूर जिले के भभुआ भगवानपुर पथ पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कटिहार पुलिस ने निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से जमीन के दस्तावेज की चोरी कर फर्जी नाम पर जमीन बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने सुपौल जिले के निर्मली में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किया। मधेपुरा जिला मुख्यालय के पास साहूगढ़ में पुल धंसने से एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अररिया जिले के रानीगंज में खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बिहार लोक सेवा आयोग के निर्णय को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, एईडीओ की भर्ती परीक्षा रद्द, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर केस दर्ज। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सैटेलाइट टाउनशिप पर चरणबद्ध तरीके से काम करें, समय सीमा का ध्यान रखें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट का विस्तार अगले सप्ताह, 3 से अब 30 हो जाएंगे मंत्री। प्रभात खबर लिखता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने पर भारत और नेपाल में बनी सहमति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर, 19 मई से होगी शुरुआत। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 48,50,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना में लिया भाग, वैशाली जिला पहले स्थान पर। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
7: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मायर MP से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जिससे भगवान ने क्यों बोले तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम तो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं वेहूं का दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है। अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे वो सारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया।
1: जी
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
0: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9932 1308।
11: ब्रेक के
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम ना बचा रहे सर। मैं
11: सोनी मैम, प्रणाम।
12: जी प्रणाम,
11: क्या हाल रहा?
12: बिल्कुल बढ़िया, रहो बताए कैसा बानी?
11: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है?
12: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इश्यू हुई।
11: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
12: रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो मतलब नेटवर्क इश्यू होगा।
11: तो ये बारिश हो रही है क्या? अभी
12: काफी भयानक वाला।
11: अच्छा, सुनाई कैसा बात?
12: सब बढ़िया, धनेश मिश्रा बात करते हैं।
11: हाँ हाँ हाँ हाँ, आई कौन है भोजपुरी में बात करेगा बात?
12: चलिए बढ़िया बात,
11: लौड़ो भोजपुरी में कमेंट करनी बड़ा बढ़िया लगे।
12: अच्छा,
11: अभी तो मजबूरी बना की हिंदी आदमी बोले ला तो भोजपुरी। अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
12: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नियन,
11: लेकिन मजबूरी बा की आदमी हिंदी आदत पर गई है, भोजपुरी बतिया पड़ रहा हिंदी में आ जाने को।
12: हाँ, सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोलेंगे के पड़ जाला। कल ड्यूटी में बानी की रूम पे?
11: ना जी, ड्यूटी में बनी है, हमने सर सोमवार का छुट्टी है।
12: अच्छा, आज कौन गाना सुनने को बता दी?
11: आज काजल सहनी का सुना दी।
12: अच्छा, काजल सहनी के
11: और दाग गहरा मिलल बा प्यार के।
12: अच्छा,
11: ये आज सुना दी।
12: और सुनवाई के भी बात?
11: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
12: ना, अभी तो रवि फोन ना के लिए रही है।
11: गाँव में भेज ना?
12: अच्छा, तो ये बात तो ना पता, बाकी गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेज।
11: चलिए, फिर देर बात हो गई।
12: जी जी, चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने
1: के।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 8570-32042 पे।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
11: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
10: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
10: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
11: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797186164।
12: Now pick it up, hello, pick it up, hello, now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
2: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर तो पाए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
2: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जी, कुमारी गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बोल सका है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बोल सका है
1: जी? बिल्कुल बोल सकते हैं भोजपुरी गाना।
0: लाए तो माई हमारे मारे लगी हो।
1: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ, यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, सिर्फ कुमारी शिवम कुमार सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडियो सुने सब।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ, कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: हाँ सर जी, हमारा संगठन होता का है।
9: जी जी, क्या होता है बताएं।
8: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
9: ना जी सबके संगे होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसाता टे।
8: हम जन की हमारे संगे होता कभी वो भरी
9: आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गया अभी बारिश होता।
8: हम नहीं कहता अभी नीचे
9: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला ला था मई जैसे अंदर पैर रखनी फिर बारिश शुरू हो गई। राकेश भाई से बात करता नहीं ना।
8: हाँ जी हाँ जी
9: जी,
8: तब से बताएं। जी हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी होइत रही
9: ओ दिन, तेहू जी भइ रहे शाम के बारिश भइ रहे।
8: हाँ शाम के पूरा टेंट समझ आने अपना लोग के लागल रहे
9: सब लेके चल गए।
8: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कमर तक खड़े तब तक पतल उतल न हो जाए।
9: बोला कि ना खाए दे आज
8: ना खाए के मिलल
9: अब सब उदिया ले गल तो कैसे आदमी खाए
8: हाँ पूरा टेंट समय पानी लागे रहे एक फीट तो पानी लागे रहे तो मैं आदमी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
9: ना खा पाई है सही बात बा
8: हाँ खाना में कुछ देख जो में पानी देखते देखती जो में पानी भगे
9: वही बात बटे खाना भी बर्बाद हो गए तो बता दी गाना कौन सुने के बा
8: सुने के चाहते पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
9: और सुनवाई के भी बा
8: हाँ सुनवाए का पूरा रेडियो काल फैमिली बा रहुआ बानी हम बानी अरे घर तो बोले जान जी संगे तनी छटक गई बड़न छटक गई बड़न जानते बहन उनका घरेलू मैटर बनू
9: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का
8: श्रीमती जी कहा था कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो हमारा संगे कहो रहो
9: 24 घंटा में 23 घंटा ना रखी
8: हाँ तू अब बाबा जी बार बार हमारे कहे चले आवेल
9: तब तो लड़ाई होके के बाद बटे
8: वही से लड़ाई हो जाता है बुधे के दिन चंद्र खदल बने की तू हमारा संग भाई मत रहा
9: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात बता
8: हमारा संग रहो हम अपन जहाँ बानी साक्षिक बनी हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली है
9: जब काम पड़ी तब मिल ली है ठीक
8: है काम पड़ी तब मिल ली
9: है
8: काम पड़ी तब मम्मी के बिना मतलब की हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है
9: बिल्कुल
8: मेरा भी कहना मिलेगा
9: चलिए ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने
10: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी, मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: जी, कैसे हैं मन्नान जी?
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
1: जी जी, बिल्कुल हो गया है।
2: हो गया कि हो रहा?
1: नहीं नहीं, हो गया है।
2: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
1: ना ना, आज तो सुबह में ही हो गया है।
2: तो गाना सुना दीजिए मैडम।
1: जी,
2: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
1: जी,
2: तो गाना हमको वही सुनना था।
1: और सुनवाना भी है?
2: और सुनवाना है क्या है, वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोगों को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है, आलिया नाम है।
1: जी,
2: इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग, वो सुनेंगे।
1: तो प्ले करे गाना?
2: बिल्कुल, शौक से प्ले कीजिए, ज्यादा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
2: Okay.

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 104.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक, ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने का।
0: थैंक यू मैम।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा?
6: ठीक बा भैया।
7: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
7: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
7: एक बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
7: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाएं। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Bhage bhage phirte hain.
10: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
12: नमस्कार मैडम।
11: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: नाम मनोज कुमार
11: जी,
12: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
11: कैसे हैं?
12: ठीक है।
11: तो क्या हो रहा था?
12: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
11: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
12: देखिए, हमारे गांव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
11: अच्छा अच्छा,
12: उसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते हैं ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर। सुंदर जी।
11: अच्छा,
12: वो पता देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
11: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
12: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
11: अच्छा,
12: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम। गाना हमको सुना दीजिए आज
11: जी,
12: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
11: सुनवाना भी है?
12: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
11: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: देखो जी किरण की लहरों, आई रे हसीना, आई रे आई रे।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: Now pick your phone up.
5: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
6: थैंक यू
7: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
6: जी रियाज अंसारी, सिवान।
7: जी जी, क्या हाल चाल है?
6: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
7: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गया लग रहा है।
6: हाँ, मैं बन गया।
7: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
6: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
7: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
6: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार करेंगे, मार करेंगे।
7: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
6: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
7: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
6: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
7: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
6: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव सुबह।
7: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
6: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना?
7: जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
6: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मकान और शहजादी।
7: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
6: और एक बात, कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
7: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
6: नहीं, नहीं, नहीं,
7: नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
6: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में ए भी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद लेते हैं हमेशा मुस्कुराने।
7: जी जी,
6: बस इतना ही, थैंक यू।
7: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
6: थैंक यू मैम,
7: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में। ओ,

0: अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, राजसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: धक जिया करे, जाने क्या पिया करे, ओ धक धक जिया करे, जाने क्या पिया करे।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99393965923।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
1: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एक बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है एक साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd क्वालिफाइड एंड फॉलो CBSE गाइडलाइंस, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन।
0: विजिट टुडे यादवपुर रोड, सरेया वार्ड नंबर 1, शंभू पथ, सरस्वती टॉकीज के पास, गोपालगंज।
1: कॉल नाउ 775-994-9440 और 775-994-9441।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिकल जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710 3992 या 9065665750।

0: सुनिए।
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289222567 या 27।

0: तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-3500।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
1: लास्ट 10th बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
2: लगातार 3 वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
1: विजिट करें CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादूपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो एमजेम। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंट स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजैक पर।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजैक पर।
3: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
4: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
3: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
4: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
3: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
4: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
3: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
4: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
5: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हैं सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहल हा कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एक बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160002।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
8: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
9: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।
10: कह दूं तुम्हें
11: हाँ
10: या चुप रहूं
11: ना,
10: दिल में मेरे आज क्या है?
11: क्या है?

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले चलेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
3: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम।
12: सुनो दिल

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीम 90.4 आमज़ जैट पर।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
8: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
8: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
8: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
5: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
4: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
5: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
4: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
5: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: रामू हरिया कल तैयार रहियलो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, न तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी न रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई।

0: 7085-6587।
1: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
2: लास्ट 10th बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
3: लगातार 3 वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
2: विजिट करें CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
4: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7055006144 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
4: तुमसे
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसन बानी रउआ सभे। उम्मीद करता नहीं कि रउआ सभे ठीक होके मौ रउआ सुन रहल बानी रेडियो रिमझिम 90.4 और हम बानी रउआ सभे के रेडियो दोस्त हारजे सोनी रउआ सभे के बीच हाजिर हो चुकल बानी अपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस के लेकर के। और रउआ भी अगर सफ़र करे के चाहत नहीं आज के एक्सप्रेस में तो सफ़र करे खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रउआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकतनी शो में व्हाट्सएप से जुड़े खातिर नंबर बा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर व्हाट्सएप ना यूज करे नहीं तो कॉल के माध्यम बाटे नंबर बाटे 72-77-16-65-96 और 72-77-16-65-96 पे कॉल करी और जुड़ जाइए आज के शो भोजपुरी एक्सप्रेस से। 2:03 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 5 बजे तक हम रुआ सभी के साथ बानी रुआ सभी के फरमाइश के साथ बानी। तो फटाफट से अपन फ़ोन उठाई शो से जुड़ल शुरू करें तब तक एंजॉय कर जाओ एगो गाना के करीना पांडे के आवाज़ में गाना बा सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रुआ सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और हम बानी रुआ सभी के रेडियो दोस्त आज सोनी रुआ सभी के बीच हाजिर हो गल बनी अगर रुआ भी जुड़े के चाहतनी शो में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रुआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकतनी और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ बढ़े तक काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा। सरफरोज अली जुड़ चुकल बानी आकिल टोला से बहुत बहुत स्वागत बटे और गाना सुने के बाद प्यार बिना चैन कहाँ रे पवन सिंह की आवाज़ में। एक और यहाँ मैसेज बटे नेपाल भी नेपाल से जुड़ल बने लिखा तनी कि सर जी राम राम नमस्कार हम नेपाल से और आज पहली बार शो में जुड़ल बनी हम आपके चैनल के बारे में कुछ जाने के चाहतनी और सर जी हम जानल चाहतनी कि आपके चैनल पर सवाल जवाब होखेला कि ना अगर होता तो कब और कितना बजे होला प्लीज़ बताए कि कृपा करें। और लिखा तनी कि हमके भी एगो गाना सुने के बाद निरहुआ रिक्शा वाला टू से और गाना के बोलबा हरदम रहिया तू हमार बन के बिल्कुल गाने के फरमाइश बा प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और सवाल जवाब के कार्यक्रम होला हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के कार्यक्रम चले ला यहाँ जाना के प्रसारण होला शाम के 5 से 7 के बीच में और ओकर रिकॉर्डिंग होला संडे के 12 से 1:30 के बीच में और नंबर बटे 8029994921 पे कॉल कर सकतनी अगर सवाल जवाब के प्रतियोगिता में भाग लेवे के बात। और बढ़े मागे एक और यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी नमस्ते नमस्कार प्रणाम जय माता दी शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से और हमके भी गाना सुने के बाद सुनवा दी और गाना सुने के बाद धनी हो सब धन तहरे नुबा बहुत बहुत स्वागत बटे। धनेश मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुकल बनी फरमाइश के साथ बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा तनी कि हेलो हाय मैडम जी गुड आफ्टरनून और का हाल बा प्रीति रदास बानी भी ले लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से लिखा तनी आज हमके भी गाना सुने के बा और संघ के नाम बटे जब हम जाए नहीं हर बलम अचरा धके रोए और काफ़ी बढ़िया गाना के फरमाइश बा फरमाइश के साथ जुड़ल बनी बहुत बहुत धन्यवाद बटे। शो में जुड़े खातिर बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी हेलो हाय दी राधे राधे कई सनबानी अनामिका चौधरी जुड़ चुकल बनी राजा लालगंज मिर्जापुर से बहुत बहुत स्वागत बटे फरमाइश बा तो पूरा करे के पूरा कोशिश बा। और आगे बढ़े में एक और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी कि खुदा के इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक शख्स मेरा नहीं हो सकता हम तो तेरे एक इशारे पर सब कुछ लुटा देते पर अफसोस तुमने कभी इशारा ही नहीं किया। और मैसेज के संगे जुड़ल बानी सोनू कुमार जी दुबई से लिखतनी हमार भी हाजिर लगा दे बिल्कुल लग गिल बटे और पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुने के चाहतनी बहुत बहुत स्वागत बटे गाने का फरमाइश बात बिल्कुल बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और बढ़े मागे और भी सारा मैसेज बस शामिल कर लीजिए लेकिन आज के पहला टिकट कन्फर्म करें हम सरफरोज अली बानी आकिल टोला से और यहाँ के सुनने के बाद गाना पवन सिंह के चैन बिना प्यार बिना चैन कहाँ रहते चलिए और टिकट कन्फर्म हो गल बा आवाज़ पहुँचा था तो अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और यहाँ एक और मैसेज रहला जरा कि गाना सुने के रहला पवन सिंह के आवाज़ में तो और टिकट भी कन्फर्म होता अपन गाना के एंजॉय करिए और

और ये गाने के बाद बढ़ल जाइए दोपहर समाचार के तरफ और फिर मिलम आप सभी से हमें ईशो में भक्ति एक्सप्रेस में। तो कहीं मत जाइए, सुनत रहे रेडियो रिमझिम के, फिर मुलाकात हुई दोपहर।

0: govin and news on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
3: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिकाल, यानम और माहे में होगी।
3: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
5: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
6: जनादेश 2026। असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
7: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
7: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटना भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
8: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद यह लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
9: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
10: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
1: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
11: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
13: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
14: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
15: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
14: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
15: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
14: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
15: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
16: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
14: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
18: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
17: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
18: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
17: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
18: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
17: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhupath, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
18: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
17: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
18: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
17: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
18: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
17: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
18: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से रुवा सबे के बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सबे क्या पंसो भोजपुरी एक्सप्रेस में। अगर वो अभी जुड़े के चाहता नहीं सो में करे के चाहता नहीं आज के एक्सप्रेस में सफर तो जुड़े खाते नंबर बाटे 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर अपना आवाज में खुद ही फरमाइश कर सकता नहीं कॉल करके नंबर बाटे 72-77-16-65-96 पे कॉल करी। व्हाट्सएप ना यूज करे नहीं था और जी भी व्हाट्सएप यूज करे नहीं जे लोग भी वो लोग व्हाट्सएप मैसेज से ही जुड़ो वो लोग कॉल ना करो। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ें तो व्हाट्सएप मैसेज पहुँचल बा लिखा था नहीं कि शमशाद सदाम नईमुद्दीन अहमद और सबको ही मुंबई से जुड़ल बटे रितेश पांडे की आवाज़ में गाना सुने के चाहत अटे ये चंदा सुना। अच्छा या ये चंदा सुने के चाहता नहीं गाना तो बहुत बहुत स्वागत बटे शो में गाने के फरमाइश बात तो प्ले करे की पूरा कोशिश बा। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि हमरों के सॉन्ग सुना दी और नीलकमल सिंह के आवाज़ में गाना सुने के चाहता नहीं। और मनोज कुमार जी मानी लुधियाना से बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बटे लिखा था नहीं कि ये गाना हम अपना वाइफ के डेडिकेट करे के चाहता नहीं और उनका नाम बटे ललिता कुमारी और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के सोनू कुमार जी सऊदी दुबई से जुड़ल बानी। बहुत बहुत स्वागत बटे एक बार फिर से और गाना के फरमाइश बात बिल्कुल बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के राउट टिकट भी कन्फर्म करे के पूरा कोशिश बटे। और बढ़े मागे एक और यहाँ मैसेज बटे सुजीत कुमार जुड़ चुकल बानी लालगंज मिर्जापुर से बहुत बहुत स्वागत बटे और गाना सीखने के चाहते नहीं पिया जाओ जनी कले कती है तो बिल्कुल गाने के फरमाइश बा प्ले करें। और बढ़े मागे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें मैसेज पहुँचल बटे हमरा पास नेपाल से और गाने के फरमाइश करे वाला बानी नाम तो मैंसन नहीं कले और सुमित वर्मा प्रोफाइल पे नाम दिखाता और यहाँ के गाना सुनने के बाटे निरहुआ रिक्शा वाला से तो चली रहा टिकट कंफर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाना के एंजॉय करी सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के। और अभी हमनी के गाना सुनत ने सन गाने के फरमाइश पहुंचा रहला नेपाल से सुमित वर्मा जी के। और बढ़े में आगे हम मैसेज पहुंच गए लिखा था नहीं कि हमार गाना बजावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़े तो मैसेज वाले लिखा था नहीं कि भोजपुरिया प्रणाम बा सोनी जी। दिलीप कुमार ठाकुर जुट चुकल बानी मिर्जापुर टुमाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत बा फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बा। मनीष प्रसाद जुट चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे। और यहाँ निर्मला कुमारी जादवपुर से जुट चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे। शो में रंजन कुमार बानी थावे से बहुत बहुत स्वागत बाटे। राजन कुमार

0: नमस्ते, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
1: अंजलि कुमारी।
0: अंजलि कुमारी जी, का हाल चल बा अंजलि जी?
1: ठीक बा, अपन बताओ।
0: हम लोग बढ़िया बा, का होत रहे अभी?
1: कुछ नहीं, रेडियो सुनत रहनी हां।
0: तो लंच हो गई?
1: हां हो गई।
0: तो गाना कौन सुने के बाज?
1: आज गाना सुने के बाद दीदी के देवर पकड़ लेता थाली के।
0: ये गाना शायद हमके लगा था ठीक नहीं है, नहीं तो प्ले कर सकत, माफ करें। नब्बे दशमलव चार रेडियो रिमझिम सुन रहे बनी रहुआ सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस। और हम रुआ सभी के बता दें कि अगर गाना के फरमाइश मैसेज द्वारा भी कैले बनी, अगर गलत गाना के फरमाइश हुई तो हम प्ले ना करें और दूसरा चांस भी ना दें, चाहे वो कॉल हो के या फिर व्हाट्सएप। तो रेडियो पे फरमाइश करते नहीं, ये बात के ख्याल रखें कि रेडियो सुने वाला बहुत लोग बाटे, हम अकेले नहीं की सुनत और बहुत लोग फैमिली के साथ सुनत। तो अगर जौन गाना रहुआ अपन फैमिली के साथ नहीं की सुन सकत, वो गाना के फरमाइश बिल्कुल ना करें। और बढ़े में आगे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें। गाना के फरमाइश करे वाला बानी शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से और यहाँ के सुनेगा वो गाना धनी हो सब धन तहरे नु बाटे। तो चलिए और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा, आवाज़ पहुँचा था अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।

0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

ब्रेक हो गई, खत्म ब्रेक के बाद फिर से हाजिर वानी रुवा सुबह के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रुवा सुबह के अपन सो वो चुड़िया एक्सप्रेस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ी था, काफ़ी सारा मैसेज बांटे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, लिखत नहीं कहे नथिया गढ़ौला उधार सिंह जी गाना सुनने के बाद। और मैसेज करे वाला बानी सविता जी, बहुत बहुत स्वागत बटे। यहाँ दिलीप राम जुड़ चुकल बानी दिल्ली से और लिखत नहीं कि सोनी जी गाना पूरा चलाएं, तो बिल्कुल कोशिश रही, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बा, लिखत नहीं कि हमार गनवा कब बाजी, तो बिल्कुल राउर गाना भी बाजी। और मैसेज करे वाला बानी अनामिका चौधरी जी, तो राउर गाना भी बाजी बने रही हमनी के साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और बड़े आगे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें और मैसेज बांटे, अगला टिकट कंफर्म करें धनेश मिश्रा दिल्ली से बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना, तो चली रहा टिकट भी कंफर्म हो गल बा। और पटना से मजनुआ दिल्ली रेफर कैले बा, गाना सुने के चाहते नहीं तो राउर टिकट कंफर्म हो गल बा। आवाज़ पूछा था अपन गाना के एंजॉय करी और सुनत नहीं।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रुवा से भी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रहे सन। गाने के फरमाइश करे वाला रनिया धनेश मिश्रा जी दिल्ली से और बड़े मागे यहाँ लिखा तने कि हम फर्स्ट में ही मैसेज के ले रही और मैसेज करे वाला बानी प्रीति रैदास जी तरह और मैसेज फर्स्ट में रहे रुआ के लागल की फर्स्ट में बावे लेकिन राउर मैसेज 6 नंबर पे आई रहे और राउर गाने भी प्ले करें। फिलहाल यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें कॉल के माध्यम से। एक और यहाँ मैसेज बाटे राजन कुमार जुड़ल बनी थावे से राउर टिकट भी कंफर्म करें और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बली कहते नहीं कि हमके भी गाना सुने के बाद और लालगंज मिर्जापुर से जुड़ल बनी लालू यादव जी बहुत बहुत स्वागत बटे और गाने के फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा और यहाँ मैसेज पहुँचल बली कहते नहीं कि झकास गाँव बटे और मैसेज करे वाला बानी निशा भारती जी विलेज वजलिया से बहुत बहुत स्वागत बटे काफ़ी दिन बाद शो में आई नहीं बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े खातिर और गाने के फरमाइश बार बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बार बने रही साथ में सुनते हैं रेडियो रिमझिम को और यहाँ अगला टिकट कॉल के माध्यम से। हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में
1: आपको बहुत स्वागत बा
0: जी का हाल चाल बा लाल बहादुर जी
1: ठीक बा
0: तो का होत रहे अभी
1: बारिश होता रहा उधर आज प्रोग्राम सुने थे
0: हमने के इधर तो बारिश बंद हो गया अभी होता क्या होने
1: ना बंद है भाई ना
0: बंद बा तो गाना कौन सुने के बाज
1: नील कमल की आवाज में
0: नील कमल की आवाज में कौन गाना
1: मैं माल के चक्कर में
0: अच्छा
1: ये गाना
0: तो चलिए प्ले कर दे बनी गाना
1: नमस्कार
0: नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के लिए

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

ब्रेक होगा खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बनी रुवा सुबह के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रुवा सुबह के अपन शो भोजपुरी एक्सप्रेस में। और 3:01 हो चुका है स्टूडियो की घड़ी में। और बड़े मागे यहाँ मैसेज जोन बा, काफ़ी सारा मैसेज बा, मैसेज का सिलसिला रुके के नाम निकले। और यहाँ मैसेज पर लिखा था नहीं कि मैम हम नेपाल से इसलिए फ़ोन लगाना कठिन है, तो क्या हम व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं? तो ये तो अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप व्हाट्सएप पर कॉल करिए शो में। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ गए हैं, अगर शो में जुड़ना है, अगर HQC के लिए बोल रहे हैं हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको संदेश मिला में अपना मैसेज रखिएगा, वहीं पर आपको जवाब मिल सकता है। ये जवाब हम नहीं दे सकते कि आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या नहीं। और बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो नमस्ते प्रणाम का हाल बा, और हम धनंजय राव सिसई बाजार से बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और गाने के फरमाइश के साथ बानी, तो बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और बढ़े में आगे एक और यहाँ मैसेज बाटे, लिखा था नहीं कि मैम हमार गाना कब तक बाजी? तो भाई सबके कहना मी है बाटे, और जिकर बारी आई सबके एक एक करके गाना बजाओ। तो नहीं एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, लिखा था नहीं कि सबके भोजपुरिया प्रणाम बा, धर्मेंद्र कुशवाहा जुड़ल बनी, अभी गुजरात से जुड़ल बनी, और लिखा था नहीं गाना सुने के बाद बरसात के मजा ला, नीलकमल के आवाज़ में तो बिल्कुल फरमाइश बा, प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बटे। और राउर बारी आते हैं हम, राउर टिकट कंफर्म करें। यहाँ धर्मेंद्र सहानी जुड़ चुकल बनी समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बार लिखा था नहीं कि मैम हमारा नाम राजन गुप्ता है पठानकोट से, और हमके भी गाना सुने के बाद तो बिल्कुल राउर टिकट भी कंफर्म हुई, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में, बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम को। और बढ़े मागे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें। और हमारा पास मैसेज पहुँचल बटे, और मैसेज करे वाला बानी प्रीति रैदास जी, विलेज लकड़ी दरकार डिस्ट्रिक्ट सिवान से, तो चली राउर टिकट भी कंफर्म होता, आवाज़ पहुँचा था। अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुनत नहीं सर, प्रीति रैदास जी के फरमाइश रहे शिवान से। और बढ़े आगे अगला टिकट कंफर्म करे मैं उससे पहले, और भी सारा मैसेज वाले कहता नहीं कि हमरों के सॉन्ग सुने के बाटे। बिल्कुल सॉन्ग सुने के बाद सुनाए यहाँ अंकुश राजा के आवाज़ में गाने के फरमाइश बा। बहुत बहुत स्वागत बाटे आप सभी के। और अगला टिकट कंफर्म करे हमारा पास मैसेज बाटे लालगंज मिर्जापुर से जुड़ल बनी अनामिका चौधरी जी, और यहाँ के सुने के बाद गाना। तो चलिए और टिकट कंफर्म होता आवाज़ पहुँचाता था अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर सॉरी भोजप्रिया एक्सप्रेस के और 3:14 हो चुकल बा स्टूडियो की घड़ी में और यहाँ बड़े मागे तक काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बाटे और अनिल जी जुड़ चुकल बानी छोटपुर से लिखा तनी प्रणाम सोनी जी हम जुड़ गए बानी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी कि मैम हम भी जुड़ चुकल बानी और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे पाजी यूपी से और बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर एक और यहाँ मैसेज बा लिखा तनिक ओहो ठीक है तनी हमके इमोजी समझ में ना आवेला तो हमके भी कुछ ज़्यादा समझ में ना आवेला थोड़ा बहुत आवेला और थोड़ा बहुत इमोजी तो रुआ के भी समझ में आवत हुई और बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज वाली कहता नहीं कि हमरो गाना सुना दिए और आकाश भाई के साथ ही सुनने की चाहत नहीं तो बिल्कुल और टिकट भी कन्फर्म हुई और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के नान बाबू बलमपुर से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे और फरमाइश बा तो पूरा करे के पूरा कोशिश बा और अगला टिकट कन्फर्म करें हम हमारा पास मैसेज पहुँचल बटे राजन कुमार जुड़ल बानी थावे से तो चली रहा टिकट कन्फर्म होता और गाना सुनी के बाई यहाँ के आटा साने गए लू तो गिल कही दे लू तो इंजॉय करिए अपन गाना के सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुरराल बानी रुवा से भी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के बाद अभी गाना सुनत रहे सन। गाने के फरमाइश करे वाला रानी है राजन कुमार जी थावे से और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गए वाली कतनी की बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजावे खातिर। बढ़े आगे एक और यहाँ मैसेज बाटे और मैसेज करे वाला बानी सोनू जी सऊदी अरब से बहुत बहुत स्वागत बटे। सो मैं फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बा बना रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम का और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करे कॉल के माध्यम से कॉल पहुँचल बा तो चलिए बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में। बिल्कुल बढ़िया रहुआ बताई कैसन बानी तो का होता अभी जी तो नाम बता दिया अपन जी गाना कौन सुने के बाद
1: ये गाना सुने के बाद अम्माई के कर्जा कम ना भराई
0: और सुनवाए के भी बा
1: सब पर फैमिली में सब कोई के
0: चली तो प्ले कर दिले बने गाना
1: जी थैंक यू
0: वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल पेनी
2: पदार्थी कब आएगी
3: आ जाएगी बेटा

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
1: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रुवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बाटे। लिखा था नहीं कि फर्स्ट टाइम बा मैडम जी व्हाट्सएप मैसेज के लिए बानी जुड़ल बानी और बड़ा मोबाइल ले ले बानी तो मैसेज के लिए बानी। और मैसेज करे वाला नाम अपन बताई। और निशा भारती बानी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में जुड़े खातिर और फर्स्ट टाइम मैसेज के लिए बनी तो बिल्कुल राउर बारी आई टिकट कंफर्म करें बने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम का। और यहाँ इरशाद मास्टर जुड़ चुकल बनी धनाव से बहुत बहुत स्वागत बटे। लिखा तनी भोजपुरी प्रणाम बार और सेंट्रेलर धनाव से जुड़ गल बनी। और बढ़े हम आगे यहाँ सन्यासी रंजन बाबा आ चुकल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे। रोवा के भी शो में बने रही हमनी के साथ सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और अगला टिकट हम कन्फर्म करें हमारा पास मैसेज बटे मनीष रजाक बानी फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा टिकट भी कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: सामान मन हम कुछ करी।
1: बहुत अच्छा कर बाबू।
2: नब्बे दशमलव चार रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुनतने से मनीष रजाक जी के फरमाइश रहे और यहाँ बढ़े मागे अगला टिकट कंफर्म करें। उससे पहले यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमके गाना सुने के बाद रितेश पांडे की आवाज़ में शमशाद सदाम और नईम दीन जी बानी मुंबई से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में। और बढ़े मागे एक और यहाँ मैसेज बाटे और गाना के फरमाइश रहे जाए चंदा ले आओ खबरिया और कहाँ गई नहीं भैया मैसेज करके भुला जाता नहीं लोग। तो चलिए राव टिकट भी कंफर्म होता टे और यहाँ एक और मैसेज बाटे कहता नहीं कि हमके भी रितेश पांडे की आवाज़ में गाना सुने के बाटे। तो चलिए राव टिकट भी कंफर्म होता आवाज़ पहुँचाता। श्रद्धाम जी तो एंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
0: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
1: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
0: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
1: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
0: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
1: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
0: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रोवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और यहाँ कॉल और जो मैसेज बाटे एकदम बढ़ल ही जाताटे और सबके का नाम बा कि हमरो गाना यहाँ एक और मैसेज बाटे लिखा था नहीं ध्यान रेडियो रिमझिम पर हो और कॉल पे सोनी जी होखे तब गड़बड़ भइल हो नाइ सॉन्ग और कॉल पे ना रहनी है बिल्कुल और सामने सबके मैसेज देखे के पढ़ लेते ही में कुछ मैसेज आ जाला जोन की शामिल करे वाला ना रहला और पढ़े में ओकरा बाद डायरेक्ट मैसेज पढ़े के बाद जब शामिल कर जाला तो हो जाला गड़बड़ और मैसेज करे वाला बानी अनिल जी छोटपुर से बढ़े में आगे एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था निकी लगा था कि हमार समैया ना ही ख़त्म हो जाए बिल्कुल राउ समय भी आई और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें धर्मेंद्र कुशवाहा जुड़ल बनी गुजरात से और यहाँ के सुने का बगाना कि बरसात के मजा लीजिए नीलकमल के आवाज़ में तो चलिए राउ टिकट कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचा तो अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने सन धर्मेंद्र कुशवाहा जी के फरमाइश रहे और यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गए बा थैंक यू। और बढ़े मागे अगला टिकट कन्फर्म करें हम दिलीप कुमार ठाकुर बानी मिर्जापुर टुमाली पंजाब से और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चलिए रहा टिकट भी कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाना के इन्जॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के बाहर यहाँ सबके क्या नाम बाकी प्लीज मैडम से हम लोग गाना बजा दें तर वह सभी की प्लीज कहे कि जरूरत ना बाटे और हमार पूरा कोशिश बा हम लोग वह सभी के टिकट कंफर्म करी और यहाँ एक और मैसेज बा कि मेरा गाना कब बजेगा तो सबका गाना बजेगा और यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें और यहाँ सोनू बानी सऊदी अरब से लिखा था नहीं कि हेलो सिंहा राउ टिकट भी दिखा था गाना दिखा था और भी कंफर्म हुई और यहाँ अनिल जी बानी छोटपुर से लिखा था नहीं कि हमरो फरमाइश बा भेजी तो भेज सकता नहीं फरमाइश भेजे खातिर कोनो रोक नहीं के लेकिन पूरा कोशिश करें कि हम राउ टिकट कन्फर्म कर दिए।

और बढ़े हम आगे, यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें। राजन गुप्ता बानी पठानकोट से जुड़ल बनी और यहाँ के गाना सुनने के बाद कि कहे नथिया गढ़ौला उधार सिंह जी। तो चलिए राव टिकट कंफर्म हो गल बा, आवाज़ पहुँचा था अपन गाने के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुरहलवानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और यहाँ बढ़े मागे मैसेज पहुँच गल बा लिखा था नहीं कि धन्यवाद गाना बजावे खातिर एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा था नहीं कि कोई भी गीत में हमके भी शामिल कर ली प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चला था सुपर सॉन्ग और मैसेज करे वाला बानी गुरु नानक पूरा बठीडा पंजाब से किशोर सबलनिया जी सवित्री सबलनिया सुमन सबलनिया बेटी अंशु के साथ जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे आप सभी के और अगला टिकट यहाँ कन्फर्म करें कॉल के माध्यम से कॉल पहुँचल बता चली बात कर जाओ की बानी और कहाँ से हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत बटे भोजपुरी एक्सप्रेस में जी नमस्ते नाम बता दिए अपन
1: हमारा राधा नाम हो स्टेशन बनी
0: बिल्कुल बढ़िया और कहाँ से बात करते नहीं और राधा जी
1: हम थावे से बोलते नहीं हमारे पापा जी का नाम रमा जी हो
0: जी जी और वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज के लिए बनी
1: जी जी पापा हमारा कॉलर नहीं हो
0: अच्छा
1: जूटे के
0: तो गाना कौन सुने के बाद बता दी
1: गाना सुना दी हमके ये तो सच है कि नहीं तो हिंदी हो जाने
0: भोजपुरी गाना का फरमाइश करे के बाद
1: भोजपुरी गाना बजा दी नाम धैले भी एक खुशी एक गम दे वाला हस्बैंड के फरमाइश
0: दा अच्छा नाम धैले भी एक खुशी देती है गम हाँ
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने

0: ये जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-93।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रुवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और 3:59 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में और एक के साथे बढ़े आगे अगला टिकट कंफर्म करें और यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी कि इग्नोर काहे कर तनी मैडम जी गाने के फरमाइश बात प्ले कर दी तो हम कोई के भी इग्नोर नहीं करत बहुत बहुत धन्यवाद बाटे शो में जुड़े खातिर और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के मुक्ति जी बानी मुक्ति नाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर और गाने के फरमाइश बात चली रहा टिकट कंफर्म करे तनी और यहाँ नील जी बानी लिखा तनी गजब के गाना और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा तनी कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा बटे और टोकेला सोनार सैया जी बड़े मागे और ये मैसेज करे वाला बानी प्रेम मधुशिया पड़ोना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और मैसेज के शामिल करे के बाद बात बिल्कुल शामिल कर ले बानी और यहाँ प्रमुख चीज जुट चुकल बानी लुधियाना पंजाब से बहुत बहुत स्वागत बटे और एक यहाँ मैसेज बाटे और कॉल करता नहीं गाना के फरमाइश भी बाटे और मैसेज करे वाला बानी नाम मैंसन नहीं कहले नाम जरूर मैंसन करी रहुआ के बानी और कहाँ से और पंजाब से जुड़ल बने प्रोफाइल पे भी नाम पंजाबी में दिखाओ तो और हमके पंजाबी पढ़े ना वाला तो जरूर नाम अपन मैंसन करी कि के बानी और कहाँ से और गाने का फरमाइश बात और टिकट कंफर्म करे के पूरा कोशिश बा बन रही हमने के साथ सुनत रही रेडियो रिमझिम का और यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें हम हमारा पास पहुँचल बा गाने के फरमाइश बटे बलमुआ कैसे तेजम रे छोटी नंदी शादा सिन्हा के आवाज़ में गाना सुने के चाहता नहीं मुक्तिनाथ जी बानी तो चली रहा टिकट कन्फर्म करता नहीं आवाज़ पहुँचाता अपन गाने के इंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम के
1: चक्री के चलाई 5 मिनट

90.4 रेडियो रिमझिम सुरलवानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और भी गाना सुनत रही सन। गाना के फरमाइश करे वाला रही मुक्तिनाथ जी और बढ़े आगे अगला फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ विमल जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और एक यहाँ मैसेज बाटे, और प्रमुख जी बानी लिखा तनी कि पंजाबी नाम कॉपी करके भेजी, पंजाबी पढ़े आवेला तो उतना मेहनत ना करी जे भी मैसेज कर ले। बाकी सारा मैसेज अगर हिंदी में कर ले बता, अपन नाम पता भी हिंदी में मैसेज करो, आखिर हमके भी तो पता चले कि चाहे कि जो भी लिसनर हमारा साथ जुड़ा तनी के बानी और कहाँ से। और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा तनी कि झकास गाना बाटे और मैसेज करे वाला बानी उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और अगला टिकट कन्फर्म करें सोनू जी जुड़ल बनी सऊदी अरब से और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली। राहुल टिकट भी कन्फर्म करता नहीं और एल्बम बाटे परियों की रानी से गाना सुनने के बाद तब प्ले कर दे बनी। गाना एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के बाद यहाँ बढ़े में आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज बांटे इरफान जी जुड़ चुकल बानी दुबई से बहुत बहुत स्वागत बटे और लिखा था नहीं कि मौका मिली तो ये सॉन्ग प्ले कर दें बहन जी और नींद से अब ये आँख खुला ला सोनी बहन जी और सबके हालचाल का बटे जरूर बताई तो हम सबके हालचाल बिल्कुल बढ़िया बार हुआ बताई कैसन बानी और बढ़े में आगे एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि बकवास गाना फरमाइश और फरमाइश अच्छा नहीं खेला गत तब इमें हम तो कुछ नहीं कर सकत जे भी गाना के फरमाइश करत अनिल लो उ लोग की गलती बा बकवास गाने के फरमाइश क्या है करत मानी लो और मैसेज करे वाला बानी अनिल जी छोटपुर से और जैसन गाना फरमाइश करम लो वैसन हम प्ले करें बस असली ना हो गए कि चाहे गाना और यहाँ बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज बा सुजीत कुमार बानी लालगंज मिर्जापुर से और यहाँ के गाना सुनने के बाद पिया जाओ जन कलकतिया शिल्पी राज की आवाज़ में तो चली राउट टिकट कंफर्म करता नहीं आवाज़ पहुँचा था अपन गाने के एंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुनतने सुन सुजीत कुमार जी के फरमाइश रहे और यहाँ के गाना सुन ले बड़ी बड़े आप आगे। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि हम ठीक बानी बहन जी और आज हमार छुट्टी रहेला, मैसेज करे वाला बानी इरफान जी दुबई से। और बढ़े में आगे यहाँ एक और मैसेज बा लिखा था नहीं हमरो गाना चला दे दिलीप राम जी बानी दिल्ली से, बिल्कुल और टिकट भी कन्फर्म करें। और यहाँ अनिल जी बानी छोटपुर से लिखा था नहीं कि हमरो फरमाइश बा लहू पुकारेला मूवी से गाना बा, तो बिल्कुल राव टिकट भी कंफर्म करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल यहाँ बड़े मागे अगला टिकट कंफर्म कर में कॉल पहुँचल बा, तो चलिए बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। और यहाँ कॉल रिसीव करे से पहले ही कॉल कट गई, तो चलिए अगला टिकट कंफर्म करता नहीं हम। हमारा पास गाने के फरमाइश पहुँचल बा कि तू हमार जान हो और गाने के फरमाइश करे वाला बानी सोनू कुमार जी दुबई से, तो चलिए राव टिकट भी कंफर्म हो गए। आवाज़ पहुँचाता था अपन गाने के एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम के।

0: रामू हरिया कल तैयार तो रहियो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा की जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रुवा सुबह के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रुवा सुबह के अपन सो बहुत बढ़िया एक्सप्रेस में, और यहाँ तो का निर्मला कुमारी बानी जादवपुर से लिखा था नहीं कि हमरो फरमाइश बटे, बिल्कुल फरमाइश बा। और धर्मेंद्र शाहानी बानी समस्तीपुर से लिखा था नहीं कि हमरो पे ध्यान दी मैडम जी, बिल्कुल ध्यान बटे। और प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से बानी लिखा था नहीं कि तू हमार जान हो हमार फेवरेट सॉन्ग हटे। और धनेश मिश्रा बानी दिल्ली से कहता नहीं कि हमरो फरमाइश बा, बिल्कुल राहुल फरमाइश बा। और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें हम। दिलीप राम जुड़ल बनी दिल्ली से, और यहाँ का सुने का बा गाना तो चली रहा, टिकट भी कंफर्म होता, आवाज़ पहुँचाता, तो अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के बा। और अभी हमनी के गाना सुनत रही सन, गाना के फरमाइश करे वाला रनिया दिलीप राम जी दिल्ली सर यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गल वाली कतनी शुक्रिया गाना बजावे खातिर। और बढ़े में आगे अगला टिकट कन्फर्म करें कॉल के माध्यम से, कॉल पहुँचल बा तो चलिए बात कर जाओ की बानी और कहाँ से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस में।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दिया अपन और कहाँ से।
1: हमारा नाम जमशेद आलम बिचा बुथुआ गाँव से बोल रहे थे
0: जी। का हाल चाल बा जमशेद जी?
1: हाल ठीक है बा, यहाँ बैठ के रेडियो रिमझिम सुनत रहनी।
0: तो गाना कौन सुने के बा?
1: ए बा भोजपुरी में एगो कव्वाली सुना दी छे तारी लाल के आवाज में।
0: गाना के नाम बता दी कव्वाली के
1: कौन अभी बजा दी?
0: हमको तो ना पता बा भोजपुरी में कौन कव्वाली बाटे।
1: खेसारी लाल के आवाज में बजा रही।
0: कौन भी?
1: हाँ कौन भी बजा रही।
0: खेसारी लाल के आवाज में तो कव्वाली नहीं थी आवाज
1: बाटे कव्वाली खेसारी लाल के आवाज में।
0: कौन नाम बता देती तो ज्यादा अच्छा रही।
1: कौन भी कव्वाली तो बजा दी।
0: कौन भी?
1: हाँ कौन भी बजा दी।
0: अच्छा ये जान बाटे यही माहे उत देखी आई गले माहे रमजान ही कव्वाली है ना?
1: हाँ ये कव्वाली है लेकिन दोसर बजा दी।
0: चलिए ठीक बा, तो कौन सी का आवाज़ में प्ले करता नहीं एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम को। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की।
2: देख के मेरी आहें क्यों भरते हो और टीना हाथ नहीं आएगी, इशारे क्यों करते हो? मजनू की तरह पागल बना दूंगी।
3: अच्छा
2: मजनू की तरह पागल बना दूंगी, घूमो के आवारा बन के सड़कों पर, लड़कियाँ आजकल मरती नहीं है तुम जैसे लड़कों पर।
3: तब भैंसा भगा दी का
2: गली खिली है ताजा ताजा बैठन बन के भारे गोरे गोरे हुस्न पे मेरे डालना ऐसे डरे। जरा ध्यान से सुनो।
3: सुनाओ।
2: मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे।
3: ओ टीना
2: क्या है
3: मजनू वो बनते हैं जो एक ही कली पे मंडराते हैं।
2: अच्छा
3: हम तो वो मर्द हैं जो हर कली को फूल बनाते हैं। अरे सुन रही हो ना?
2: हाँ हाँ।
3: तुम क्या पागल बनाओगी हमको ए हसीना?
2: हाँ?
3: तुम क्या पागल बनाओगी हमको ए हसीना? एक बार छू दिया तो तेरा

0: लाख अदाएं रखती हूँ, लाख अदाएं रखती हूँ, तो समझना ऐसा वैसा।
1: अरे समझना ऐसा वैसा।
2: अरे टीना,
0: हाँ हाँ,
2: सुना
0: सुनाओ।
2: तू ऐसा काम कर
0: क्या
2: कि दुनिया में नाम हो जाओ।
0: अच्छा,
2: थोड़ा तू सरका,
0: हाँ,
2: थोड़ा हम सरका, आ दोनों जाने के काम हो जाओ।
0: सबर से काम लो तो शायद करार आ जाए। सबर से काम लो,
2: हाँ,
0: तो शायद करार आ जाए। और इतना भी मत खाओ कि खट्टी डकार आ जाए। मैं कहती हूँ,
2: अच्छा?
0: मेरे चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं जिसे सूंघ लूं उसे बुखार आ जाए।
2: अच्छा,
0: तो क्या
2: अगर जिद पे आ जाई, कौनो मन चला, तब तो हर सारा घमंड तोड़ दू। आ दिवाली में घर से बाहर मत निकली हो, न तो कौनो पटाखा समझ के फोड़ दी।
0: इतना आसान नहीं, ऐसी वैसी नहीं

0: उड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे, मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे।
1: अरे तो देरी किस।
2: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
3: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
4: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
3: Visit करे CBSE Public School, बस्टीला खास गोपालगंज या contact करे 7633970104।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90974602।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के बाटे। और यहाँ फरमाइश जौन बा अभी भी बढ़ल जाता और काफ़ी सारा फरमाइश बचल भी बा। और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि बहुत ही बढ़िया पवन सिंह के गाना चला था। और मैसेज करे वाला बानी दिलीप राम जी दिल्ली से बढ़े मागे। और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि मैडम जी हमरो गाना बा हमके भुला गल बनी का बिल्कुल नहीं कि भुलाइल जी बने रही हमने के साथ सुनते ही रेडियो रिमझिम के। और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा था निकी खेसारी लाल कब से कव्वाली गावे लगले। और प्रमुख जी बानी लुधियाना पंजाब से तभी तो हमके भी ना पता बा, हमके बस जहाँ तक पता बा कि दुगो कव्वाली बाटे वो भी रमज़ान पे। और ओकरा अलावा दूसर कव्वाली तो हमके भी ना पता बा, फरमाइश करे वाला जी बानी वो अगर सुन ले हुकम तो हो सकता। और यहाँ अगला टिकट कन्फर्म करें निर्मला जुड़ल बानी जादवपुर से। और यहाँ का सुनी के बाटे गाना पूरा परपटी तोरे नामे कर दे हम। तो चलिए रहो टिकट कंफर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

0: 94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस का। और अभी हमनी के गाना सुनत रही से गाने के फरमाइश करे वाला रनिया निर्मला जी और यहाँ के तरफ से मैसेज भी पहुँच गए लिखा तनी थैंक यू गाना बजाए खातिर और बढ़े में आगे अगला टिकट कन्फर्म करें कॉल के माध्यम से। और कॉल पहुँच गए पता चली बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ना और नाम बता दिया अपन और कहाँ से।
1: निर्मला कुमारी मुगरा
0: जी। कैसन बानी निर्मला जी।
1: ठीक बानी अपन
0: कहें। हम बढ़िया बानी। तो गाना कौन सुने के बाद।
1: प्रमोद प्रेमी के आवाज में पगले बना देलू रानी।
0: पगले बना देलू रानी।
1: हाँ नया सुन निकल
0: गए। अच्छा नया गाना इल्बा।
1: हाँ पगले बना देलू।
0: तो चलिए प्ले कर दे बानी गाना।
1: ठीक बा
0: बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए।
1: ओके मैम।
0: ओके।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से

0: के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कौन निर्मला बाड़ी हो जादवपुर से, और यो बिगाहा वाला गाना सुनत बाड़ी, और खैर अच्छा गाना बा। और आगे लिखा तनी कि मुगरा वाली निर्मला भी रोज नया नया गाना ढूंढत रहली, कौन गाना आयल बटे, और नाइस सॉन्ग गाना निर्मला जी के बड़े मागे। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था, नहीं लाजवाब सॉन्ग और मैसेज करे वाला बानी मोहम्मद इरफान जी फ्रॉम दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद रोगा के भी। एक और यहाँ मैसेज बा सत्यम कुमार गुप्ता जुड़ चुकल बानी श्रीपुर गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में, बने रही हमने के साथ सुनत रही रेडियो रंजन के। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था, नहीं क्यों है कराली कराली अपन नामे, और सुपर सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग, और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के निशा भारती जी वजह ले से, तो बिल्कुल राहुल गाना के फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बा। एक और यहाँ मैसेज बाटे, और धर्मेंद्र शाह ने जुड़ल बनी समस्तीपुर से, और यहाँ के सुने के बा गाना गांव के सतुआ मस्त मस्त, तो चली राहुल टिकट भी कंफर्म हो गल बा, आवाज पहुँचा था अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बटे बोर छुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रही सन। गाना के फरमाइश करे वाला रनिया धर्मेंद्र शाहनी जी और यहाँ के गाना सुन ले बानी और बढ़े मागे अगला मैसेज बाय लिखा था निकी झका सतुआ सॉन्ग और भाई मेरे तरफ से 11 रुपया का पेमेंट है और मैसेज करे वाला बानी इरफान जी फ्रॉम दुबई से और लिखा था निकी पुरस्कार मिला था सतुआ पर और प्याज मिर्चा खाए खातिर और बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं आप तो टिकट कंफर्म कर दी बिल्कुल पूरा कोशिश बटे और यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें प्रमुख शिवानी लुधियाना पंजाब से और यहाँ की तरफ से गाने के फरमाइश बटे और गाना डेडिकेट कर तनी निर्मला जी के गोपालगंज बिहार के रहने वाला बनी तो चलिए राव टिकट भी कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचाता अपन गाने के इन्जॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम के।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस का। और अभी गाना सुनत नहीं सुन गाने के फरमाइश करे वाला नहीं है, प्रमुख से लुधियाना पंजाब से और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गया बा, लिखा था नहीं कि थैंक यू गाना बजावे खातिर। और गाना सुन के निर्मला जी खुश हो गए लिखी हैं। अभी तो निर्मला जी ही बताई हैं और बढ़े आगे एक और यहाँ मैसेज बा, लिखा था नहीं कि प्रमोद जी के गाना काफ़ी लाजवाब और मुझे का बात, प्रमुख जी खाली नथुनी पर इतना ध्यान बांटे। और मैसेज करे वाला बानी इरफान जी दुबई से। और एक और यहाँ मैसेज वाली कहते नहीं कि अगर हमार गाना बाजी तो तब वो कोनो बात नहीं है, कहे कि अब टाइम कम बा। जी हाँ, और खाली राहुल फरमाइश ही बाकी नहीं के, अभी भी कम से कम 20 फरमाइश बाकी बाटे। और मैसेज करे वाला बानी अनिल जी छोटपुर से। और बड़े मागे एक और यहाँ मैसेज बाटे, और काफ़ी देर से इंतजार करता नहीं गाने के फरमाइश करके, और पहला बेर शो से जुड़ल बनी और ना देर भर तो चलिए राव टिकट भी कंफर्म करता नहीं, आवाज़ पहुँचा था तो चलिए अपन गाने के एंजॉय करी। और मैसेज करे वाला बानी नाम बाटी निशा भारती जी ब्लेज वजोलिया से जुड़ल बनी और यहाँ के सुने के बाद गाना जब जब बहे पुरवैया हो गाने के फरमाइश बात तो चली राव टिकट कंफर्म हो गल बा, आवाज़ पहुँचा था अपन गाने के एंजॉय करी। और सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजप्रिया एक्सप्रेस का और अभी गाना सुनाते हैं सुनिशा भारती जी के फरमाइश रहे और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गया लिखा था नहीं थैंक यू मैम वेरी वेरी सो मच दिल से और मेरा तरफ से फरमाइश रहे और लिखा था नहीं कि मैम फ्री में आपके कपड़ा सिल दें हमारा गाना की फरमाइश पूरा करने तो ओकर जरूरत ना पड़ी कहे कि हम खुद सिलाई करें नहीं और हम अपन कपड़ा कोई के इससे ना सिलवानी हमके अपन सिलल ही कपड़ा पसंद आवेला तो रुआ इतना मेहनत ना करी और बढ़े हम आगे अगला टिकट कंफर्म करें और काफ़ी देर से परेशान बानी उमाशंकर मिश्रा बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चलिए राहुल टिकट भी कंफर्म करो तनी आवाज़ पहुँचा था तो अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम के

और यह गाना के साथ रोवा सभी दी आज के इस शो से हमके जाए की इजाजत। स्वस्थ रही, मस्त रही, सुनत रही रेडियो रिमझिम के, और फिर मिल जाए अगला कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94921 8029-94921 पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो,
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: नमस्ते मैम।
11: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
10: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
11: जी, कैसे हैं मनोज जी?
10: ठीक है मैम।
11: तो क्या करते हैं आप मनोज?
10: किसी से नहीं,
11: मतलब से?
10: जी आज मतलब है ना, मतलब ये आज संडे था ना, खेल शुरू है ना? खेल तो मैम शुरू है ना?
11: हाँ, खेल शुरू है
10: जी। वही हमने सोचा गलत नाम लगा दी जी मैम।
11: तो जी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
10: हमारी पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है
11: जी।
10: जी, अगले साल 2025 में कंप्लीट हुई है
11: जी। जी जी, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: जी, पापा का नाम है अनिरुद्ध सिंह और मम्मी का नाम है कांतिलारी देवी
11: जी।
10: जी,
11: तो शुरू किया जाए, आज का पहला प्रश्न लिया जाए आपसे।
10: यस मैम।
11: ओके,

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: H2O विकल्प नंबर सी H2O।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी H2O को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है? कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है? ऑप्शन ए पेंगुइन, बी बतख और सी किंगफिशर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: पेंगुइन।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: मैम ऑप्शन क्या क्या था?
0: ऑप्शन ए पेंगुइन, बी बतख, सी किंगफिशर।
1: ये तो बतख है।
0: बतख
1: बी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं? लॉक कर दूं ना?
1: जी
0: जी। तो चलिए मनोज जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बतख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा किंगफिशर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। हेलो जी, बहुत आपका रेडियो रिमझिम क्या कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम सलाम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: इजहार अंसारी जैरापट्टी से।
0: जी, कैसे हैं इजहार जी?
2: अच्छा है मैम।
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
2: पढ़ाई करते हैं नाइन्थ में है।
0: जी, तो खेला जाए आज का खेल आपके साथ शुरू किया जाए।
2: यस मैम।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
2: अम्मी का नाम कैसा खातून और अबू का नाम मेरा जानकारी।
0: तो इजहार जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए S1, ऑप्शन बी Na और ऑप्शन सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बोलिएगा फिर से।
0: ऑप्शन ए S1, बी Na, सी SO2। हेलो
1: Na को फिक्स कीजिए मैम।
0: Na
1: मैं SO2 को फिक्स कीजिए।
0: SO2 को ऑप्शन सी।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं, फिक्स कीजिए।
0: चलिए तो जहाज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी SO2 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा Na, ऑप्शन बी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
7: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ की टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
11: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: जी कमरान नफीस, विलेज चौधरी सुल्तान।
0: जी तो कैसे हैं कमरान जी?
11: जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
11: और सब बढ़िया?
0: जी जी सब बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
11: जी जी जी जी लगे
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी, एक बार बता दीजिए।
11: मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट है।
0: जी उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
11: नहीं मैं छोड़ दिया था 14 में।
0: जी तो शुरू करें?
11: जी जी
0: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
11: मोहम्मद रशीद और रजिया खान।
0: जी और आपसे आपके पहला प्रश्न लिया जाए?
11: जी
0: जी, जी।

0: तो कमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज और सी नागभट्ट। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था?
1: प्रतिहार वंश का महानतम राजा।
0: हाँ,
1: ऑप्शन के
0: ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज, सी नागभट्ट।
1: नागभट्ट
0: श्योर है
1: जी?
0: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागभट्ट को लॉक करते हैं। जी, और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा वर्षराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: सोनू दुबे बात कर रहा हूँ, पीर पार्टी से।
0: जी, कैसे हैं सोनू जी?
2: बढ़िया है, आपका बताइए। मैं
0: हम भी बढ़िया है। तो सोनू जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: अब ये सेकेंड ईयर चल रहा है।
0: जी, और आगे क्या करना है, सोचा है कुछ आपने?
2: सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी कर रहा हूँ।
0: कहीं जा रहे हैं क्या अभी आप?
2: हाँ हाँ, चल रहे हैं अब। ठीक है, रुक गया।
0: तो शुरू किया जाए आज का खेल आपके साथ।
2: जी,
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कालिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष देवी।
0: जी, तो सुनो जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन। आपका समय शुरू होता है। आप चोर हैं
1: जी।
0: तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी स्वीडन को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्रिटेन फिक्स है।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं होने, फिक्स कीजिए।
0: ओके तो चलिए सुनो जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा फ्रांस।
1: फ्रांस
0: जी।
1: ओके मैम ठीक।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
4: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
3: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
4: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
3: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
4: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स। म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
3: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
4: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99-393-65-930।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
14: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029494921 8029494921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
17: हेलो,
0: स्वागत है टीम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
17: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
17: मैं प्रियंका फटेल बोल रही हूँ, झांसी से।
0: प्रियंका?
17: हाँ, झांसी से।
0: प्रियंका माझा से?
17: झांसी, झांसी,
0: झांसी।
17: हाँ।
0: अच्छा, तो पहली बार कॉल की है प्रियंका जी?
17: हाँ हाँ मैम, पहली बार कॉल की है।
0: तो कहाँ से पता चला आपको इसके बारे में?
17: मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिव्यांग है, तो कॉल लगाते हैं आपके पास, तो मुझसे बोले कि आपकी बात करनी है, आप मतलब बता सकते हैं, सोच सकते हैं। मैम
0: तो कैसी हैं प्रियंका जी?
17: मैम बिल्कुल ठीक हूँ।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
17: मैम 12वीं तक।
0: 12वीं तक। और सोचा है कुछ आगे क्या करना है?
17: हाँ मैम, अभी तो ग्रेजुएशन करेंगे।
0: अच्छा, अभी ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद क्या बात है। चलिए बढ़िया है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए प्रियंका जी।
17: मैं मेरे पापा का नाम रवीश जी, मम्मी का नाम लक्ष्मी
0: जी। जी, तो लिया जाए आपसे आज का प्रश्न पहला।
17: जी मैम।
0: पता है इसके बारे में सब कुछ? हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, इसका रूल रेगुलेशन जो भी है?
17: नहीं मैम।
0: नहीं मालूम है। तो प्रियंका जी, इसमें आपका 10 प्रश्न होगा। जी, और 10 प्रश्न के साथ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक सही उत्तर आपको बताने होंगे जो कि ऑप्शन में होंगे।
17: जी,
0: जी, और हर जवाब के लिए आपको 10 सेकंड दिया जाएगा।
17: जी
0: जी, तो शुरू किया जाए।
17: जी
0: तैयार है?
17: हाँ
0: जी।

0: तो प्रियंका जी आपसे पहला प्रश्न ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी HO2 और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम H2O।
0: H2O प्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो?
1: जी।
0: तो चलिए प्रियंका जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी H2O को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2012 और ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 26 जनवरी 2015।
0: श्योर हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो प्रियंका जी लॉक कर दे 26 जनवरी 2015 को?
1: जी मैम।
0: जी, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2014। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो डिमशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: शालू कुमारी, मैंने उस बार फोन किया था।
0: जी जी, कैसी हैं सालू जी?
2: आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सालू जी?
2: 8 तक।
0: 8 तक?
2: हाँ, अभी पढ़ रहे हैं 8 का। अब 9th में जाने वाले हैं।
0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू।
2: मम्मी का नाम है निर्मला देवी और पापा का नाम है बलेंद्र कुमार प्रसाद।
0: जी, और अगला संडे आप ही विनर बनी थी ना?
2: यस मैम। तो मुझसे क्या होता है?
0: उससे यही होगा, हमारे स्टूडियो से आपको कॉल जाएगा, कुछ गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारे डायरेक्टर सर जो है वो तय करेंगे कि क्या देना है, कब बुलाना है और कब देना है। ठीक है।
2: यस मैम।
0: जी, तो तैयार हैं आप आज के खेल के लिए? शुरू किया जाए?
2: यस मैम।
0: जी,

0: तो सालू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज और सी नागभट्ट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन ए क्या था?
0: भोज,
1: हाँ,
0: बी वर्षराज और सी नागभट्ट।
1: सी नागभट्ट।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूँ?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा वर्षराज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746864। घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: क्या नाम है?
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: बिमल कुमारी
1: जी, लाइन बाजार।
0: कहाँ पड़ता है आपका लाइन बाजार?
1: पास में आता है इधर लाइन बाजार, जो बथवाला रोड है ना उधर ही, फुलवरिया बस वाले रोड में आता है लाइन बाजार।
0: अच्छा, तो क्या करती हैं बिमल जी?
1: अभी तो पढ़ाई बंद हो गया है, सब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया है, बाकी अब कुछ रीजन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है मास्टर लाइन में DLED का।
0: तो ग्रेजुएशन कब फाइनल किया
1: है? ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुई 2022 में।
0: अच्छा, तो हेलो कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो कैसे खेला आपके साथ
1: जी?
0: आज का खेल शुरू किया जाए आपके साथ?
1: जी जी
0: जी। तो विमल जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: जी, मेरे पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है और मम्मी का नाम प्रभासी देवी।
0: जी, तो लिया जाए ना पहला प्रश्न।
1: जी
0: जी,

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए S1, बी Na और सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो
1: जी, बोलिए।
0: सही उत्तर बताइए।
1: आवाज कट आ रहा मैडम जी।
0: क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ा कि ऑप्शन?
1: आवाज आपका कट के आगे बीच में, पूरा फुल नहीं सुन पाए।
0: बोल रहे हैं कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? आवाज
1: जी।
0: ऑप्शन ए S1, बी Na और सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: Na।
1: हाँ
0: श्योर है?
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी Na को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1874, बी 1875, सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।

0: 1875।
1: श्योर है?
0: श्योर तो नहीं है मैम।
1: लॉक करूं?
0: हाँ कर दीजिए।
1: तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1875 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन डी चीन।
1: चीन तो ऑप्शन में दिए ही नहीं हम आपको। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है स्वीडन।
0: चीन सॉरी का ऑप्शन डी था। हाँ
1: ऑप्शन बी है फ्रांस।
0: फ्रांस
1: तो फ्रांस को
0: ऑप्शन सी
1: स्वीडन
0: कंफर्म नहीं है, कर दीजिए।
1: कौन सा करे, बी करे, सी करे, ए करे, कौन सा करे कंफर्म?
0: बी कर दीजिए। दोनों मेरा बी सही बात हो सकता है, इसका भी बी हो, पर लगाइए लॉक कीजिए देखते हैं।
1: ऑप्शन बी
0: हाँ
1: फ्रांस।
0: हाँ
1: लॉक है, लॉक करें?
0: हाँ कर दीजिए।
1: चलिए तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। हेलो क्वेश्चन कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?

0: पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पहला ऑप्शन क्या बोली है मैं?
0: CO2।
1: तो ऑप्शन सी होगा
0: H2O।
1: जी H2O।
0: क्लियर है
1: जी?
0: लॉक कर दो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए जुलू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर H2O बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन और सी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अमेरिका को लॉक कीजिए मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं, श्योर नहीं है।
0: तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए जुड़ी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा फ्रांस, टू का सिद्धांत। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल,

0: एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
2: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
4: हेलो,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
4: दिलीप राम, दिल्ली से।
3: कैसे हैं दिलीप जी?
4: और बताइए। बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
3: हम भी बढ़िया हैं।
4: आज सीट बहुत खाली खाली सा लग रहा है।
3: खाली तो नहीं है,
4: आज लगाया तो लग गया, इसलिए कि और भी लगाते लगाते परेशान हो जाते थे, लगता ही नहीं था।
3: होता है कभी कभी कि लग सांस दे जाता है तो एक ही बार में लग जाता है तो।
4: लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो है ना अभी लगे हैं और भी 12 बज के आपको 51 मिनट पे मौसम कैसा है उधर का?
3: ठीक है।
4: तो आप ठीक हैं?
3: जी हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया। तो शुरू क्या दे आज का खेल आपके साथ?
4: ठीक है।
3: जी तो मम्मी पापा का अपना नाम बता दीजिए आप।
4: मेरा बाबू का नाम श्री गरीब राम है, माँ के नाम श्री किशोरी देवी है। गाँव पता है सिहोरवा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण।
3: जी, और पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
4: इंटर तक हुआ है।
3: इंटर जी। तो आपसे पहला प्रश्न लिया जाए?
4: जी बोलिए।
3: जी,

0: अच्छा आपका पहला प्रश्न ये है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: करीबन एक बार और बोलिएगा
0: क्वेश्चन या ऑप्शन।
1: नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ऑप्शन पूछ रहे हैं।
0: ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन।
1: जी वो इस पे रखिए, स्वीडन पर रखिए।
0: श्योर है?
1: लक का सहारे खेलते हैं, आप लगाइए लक।
0: चलिए तो आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं।
1: जी
0: और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सी स्वीडन बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी बताया जाए।
0: दूसरा प्रश्न ये है, योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2012, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और बोलिएगा, 15 कितना बताया,
0: 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2015।
1: तो पहला तो आप लॉक कीजिए,
0: 15 अगस्त 2014।
1: जी
0: कंफर्म है?
1: ये भी लॉक कैसे आ रहे हैं?
0: तो चलिए दिलीप जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न उत्तर सही है तैयार
1: तीसरा है
0: जी। तीसरा प्रश्न आपसे ये है, आर्य समाज की स्थापना कब, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875, सी 1874। आपका समय शुरू होता है अब।
1: इसका उत्तर और पूछा गया था, इसका मतलब शुरू होगा, इसका पूछा गया।
0: लॉक करूं?
1: लॉक करिए।
0: ओके
1: लेकिन दिमाग से उतर रहा है बात के, लेकिन साइड से भी कर
0: तो ऑप्शन सी लॉक करो ना।
1: ओके
0: तो चलिए दिलीप जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1875, ना कि 76।
1: एक बार पूछा गया था, मैं ऊपर गया मेरे से, एक बार और पूछा गया था।
0: जी जी कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: हेलो
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम है सलोनी कुमारी बंजारी बलमस्तान गोपालगंज से।
0: जी कैसी है सलोनी जी?
2: अच्छी हूँ
0: जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आप?
2: बीए।
0: फर्स्ट ईयर चल रहा है? लास्ट ईयर।
2: लास्ट ईयर।
0: लास्ट ईयर। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लता।
0: जी तो शुरू किया जाए खेल को।
2: हाँ
0: तैयार है पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
2: हाँ

0: देवभूमि किसको कहा जाता है? देवभूमि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उत्तराखंड। हाँ तो नहीं है, लग रहा यही होगा।
0: तो लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, ₹2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना, कहाँ बना है? ऑप्शन ए जयपुर, बी भोपाल, सी सूरत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सूरत।
0: श्योर है?
1: सूरत नहीं है, पर इसी को टिक कीजिए।
0: सब लग के सहारे चल रहे हैं।
1: हाँ
0: चलिए, तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सूरत को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए SI, ऑप्शन बी NA और ऑप्शन सी SO2। आपका समय होता है अब।
1: NI को लगाइए।
0: NI?
1: हाँ।
0: SI है ऑप्शन ए, NA है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है SO2। तो किसको लगाएं?
1: NA को लगाइए।
0: ऑप्शन बी NA।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, पर लग रहा यही होगा।
0: चलिए तो लॉक कर दें।
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: तो सलोनी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी NA को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1875 और ऑप्शन सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी 1875।
0: श्योर है?
1: शॉर्ट यही होगा, शॉर्ट तो नहीं है।
0: चलिए तो लॉक कर दें।
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1875 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन और सी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन ये है कि शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया?
1: अमेरिका को टिक कीजिए। अमेरिका।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, पर लग रहा यही।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा फ्रांस।
1: ठीक है।
0: हेलो प्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
14: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रिमझिम।
15: सुनो दिल।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9495121100001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 18744।
8: ठक ठक।
0: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं।
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
0: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
13: ये शादी का दिन है, शादी का दिन है, शादी का दिन है।
14: क्यों भाई लखपति?
15: हाँ भाई प्रजापति,
14: यहाँ तो लोग सब ऐसे बैठे हैं जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है,
15: पुलिस खड़ी है,
14: खटिया खड़ी है।
15: अरे उठो नाचो
14: गाओ हुल्लड़ मचाओ।

0: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
1: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
2: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
1: Visit करे CBSE Public School, बस्तीला खास गोपालगंज या contact करे 763397010 4।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें।

0: और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57 902।
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065575।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
12: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें

0: 112 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
2: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
2: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
2: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें आशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
8: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
8: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
8: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right.

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: तू जो है।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के तहत आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे, ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। श्री चौधरी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। इस सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिवस लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और उसकी भूमिका पर व्यापक चर्चा की जा रही है।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर मीडिया में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि यह दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और जागरूक समाज को बढ़ावा देने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय से यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व निशांत कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद

0: समाज में सौहार्द और सद्भाव की भावना को मजबूत बनाना है।
1: हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही अर्थ है सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले, सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारा का भाई भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था, पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की, मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना।
0: बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पटना से सड़क मार्ग से वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण होते हुए आज शाम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंची। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। निशांत कुमार आज वाल्मीकि नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल यहीं से दोबारा यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि निशांत कुमार की यात्रा से पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं।
2: उनको पूरे पार्टी की शुभकामना है और पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। निशांत जी की यात्रा निश्चित सफल होगी, इसलिए कि कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता है और सभी लोग चाहते हैं कि निशांत जी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हों।
0: वहीं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार इस यात्रा से जमीनी स्तर पर और मजबूत होंगे।
3: यात्रा आपस में प्रेम का, आपस में मोहब्बत का, आपस में भाईचारा का यात्रा होगा। निशांत कुमार जी जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझ बुझ करके इस राज को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव से सरकार को ताकत देंगे।
0: राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया है। पिछले 9 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। निलंबित पदाधिकारियों ने 30 अप्रैल को बिना शर्त सामूहिक अवकाश से लौटने की घोषणा की थी। इसके बाद सभी को निलंबन मुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को संबंधित जिलों में योगदान का निर्देश दिया गया है। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में बिहार सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा है कि पार्टी पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएगी। श्री आलोक ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं रह गया है।
1: लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनको कोई भरोसा नहीं रह गया। लगातार हारते हारते ये मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुके हैं, कभी ये चुनाव आयोग को कोसते हैं, कभी ये ईवीएम को कोसते हैं, कभी ये केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोसने लगते हैं। इनको सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा, अब सुप्रीम कोर्ट को भी कोसने लगे। विपक्ष को दावे करने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, यकीन मानिए।

0: लगातार प्रदर्शन एनडीए का होगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाएगी और एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक और शुभा नहीं है।
1: सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के समीप 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारा गया अपराधी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस एनकाउंटर पर कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है।
2: अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है, अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था और देखिए उसने गाड़ी सटा गोली मार के हत्या कर दिया, तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है। तो अपराध मुक्त बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लिए और समूल नाश किया जाएगा अपराधियों को। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे।
1: राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पटना में आयोजित बिहार एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार को केवल आर्थिक निवेश ही नहीं बल्कि बौद्धिक और संस्थागत रुचि को भी आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे संस्थान विकसित करने की जरूरत है जहां छात्रों को प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद को सशक्त बनाने का मौका मिले। राज्यपाल ने अनौपचारिक शिक्षा जैसे सेमिनार, संगोष्ठी और संवाद के जरिए विचारों के आदान प्रदान पर भी जोर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है, इससे तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 4 मई राज्य के उत्तर भाग में कुछ स्थानों पर एवं दक्षिण भाग में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, मधुबनी एवं सुपौल जिले में ओलावृष्टि होने की संभावना है और किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 94 लीटर नेपाली शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने जिले में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पाए जाने पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने मधेपुरा जिला मुख्यालय और उदा किशनगंज कोर्ट परिसर में नवनिर्मित कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की प्राथमिकता न्याय को लोगों के द्वार तक पहुंचाना है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के लाभा जीरोमाइल चौक के समीप चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम सिंह यादव के निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत अवैध कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान चालक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी मोहल्ले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने के मामले में हुई हिंसक झड़प में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार सद

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो 90.4 FM। सुनो।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
5: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
5: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
5: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 2027 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
5: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
4: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
5: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
4: Visit करें CBSE Public School, Bastila Khas, Gopalganj या contact करें 7633970104।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
5: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
8: पूछे जो कोई

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपाल।

0: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
8: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
7: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
8: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: प्रसाद क्लिनिक।
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो एमजेम।
13: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिक्स, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें

0: चांद के।
1: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
5: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय

0: शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
2: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6000 काउंटिंग कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056559536 या 9056557902।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
3: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
2: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
3: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
2: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
3: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
2: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
3: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सासा महाता, गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
10: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
10: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
10: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: प्रसाद क्लिनिक।
14: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
13: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
16: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
17: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल लूट कांड में भी 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। अलग अलग मामलों में हुई कार्रवाई में 25 लोगों को भेजा गया जेल। 5639 शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग को हुआ संदेह। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। कल 1 बजे रात्रि में मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जिगना जगन्नाथ तोताराम के टोला में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार यादव, पिता जंग बहादुर यादव, को घर के बाहर खटिया पर जब वे सोए हुए थे, उसी समय गांव के ही व्यक्तियों द्वारा सिर में गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष मीरगंज द्वारा पुलिस बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL की टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया। आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र किए गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय अस्पताल से घायल व्यक्ति को डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और यहां से भी डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। फिलहाल पटना में उसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य पुलिस को सामने आया कि पूर्व के भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी की गई है और भूमि विवाद का मामला न्यायालय में लंबित भी है। इसी विवाद के कारण गांव के ही मदन कुमार, हरिनंद, पिता स्वर्गीय गुलजार चौधरी तथा हरिकेश, पिता स्वर्गीय गुलजार चौधरी ये सभी जगन्नाथ तोताराम टोला के निवासी हैं। इनके द्वारा ही गोली चलाने की संभावना व्यक्त की गई। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के आवेदन पर कांड दर्ज करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से अवैध हथियार के संदर्भ में पुलिस पूछताछ कर रही है। वर्तमान में विधि व्यवस्था वहां सामान्य है। पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्थिति पर पूरी निगरानी रख रही है और गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के अमही बाके गांव में रविवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप महिला के परिजन पर ही लगा है। हालांकि अब तक इसमें आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और आसपास के लोग भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति घटना के बाद से फरार है, जिसको लेकर लोगों को संदेह है। बताया जा रहा है कि मृत महिला अमही बाके गांव के मनसी मियां के पुत्र नसरुद्दीन मियां उर्फ सहालू की 26 वर्षीय पत्नी नाजिया खातून थी। रविवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच खून से लथपथ महिला का शव जब लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान में जुट गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और घटना के बाद से ही महिला का पति फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर अंदेशा है कि पारिवारिक कलह में महिला की हत्या की गई है। हालांकि अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई और जांच पड़ताल कर रही है। लगभग 1 साल पहले बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने प्रदीप कुमार पिता राम बाबू प्रसाद एवं साकिर अंसारी पिता अब्दुल कादिर साकिर नबीगंज बाजार थाना बसंतपुर जिला सिवान को हथियार का भय दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल लूटने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में अब पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों को आधार बनाते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त छोटू राम पिता दुलाल चंद राम साकिन हेमू छपरा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को विधिवत गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद अभियुक्त ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस कांड में कुल 3 अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने कांड के सफल उद्भेदन की दिशा में आगे भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने 24 घंटों में गिरफ्तार कुल 25 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें हत्या के प्रयास, हत्या का मामला और शराब की तस्करी तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इन पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब और कई वाहन भी जब्त किए हैं। आज जिले के शिक्षा विभाग से एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिले के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित शिक्षकों से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। बताया जा रहा है कि जिले में शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। ई शिक्षा कोष के 1 दिन के डेटा ने ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि 5,639 शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी संबंधित शिक्षकों से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। जांच में सामने आया है कि कई शिक्षक ऑन मार्क ड्यूटी दिखाए हैं, जबकि कुछ बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिक्षक तय समय से देर विद्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करते पाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए साफ कहा है कि समय पर विद्यालय पहुंचना और सही तरीके से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि तय समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस शिक्षा कोष के माध्यम से अब शिक्षकों की उपस्थिति पर नियमित निगरानी भी की जा रही है, जिससे अब किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत सामने आ सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कई जगहों पर सड़क के किनारे लोगों के अतिक्रमण से कई बार लोगों की जान तक जा रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों को थोड़ा भी मानवता का ख्याल नहीं है। कई जगहों पे लोग सड़क पर ही मिट्टी, गोबर, गिट्टी, बालू इत्यादि गिराकर लापरवाही बस वहाँ कई कई दिनों तक उसको छोड़ रखे हैं और वहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति को अचानक गिट्टी, बालू या मिट्टी या गोबर जैसी चीजों पे अगर मोटरसाइकिल चढ़ जाती है तो उनके जीव का काल हो जाता है। आज ऐसा ही एक मामला गोपालगंज सिवान मुख्य पथ पर तुरकहा में नहर से पहले टर्निंग प्वाइंट पर देखने को मिला, जहाँ एक व्यक्ति की जान चली जाती। बताया जा रहा है कि तेज गति से जा रहे मोटरसाइकिल सवार के सामने से अचानक एक पिकअप गाड़ी आई। पिकअप से बचने के लिए जब मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे अपने गाड़ी को ले गया तो उसके सामने गोबर का बड़ा सा अंबार आ गया और गोबर में उसकी गाड़ी घुस गई, जिससे वह गिरा और पूरे शरीर में गोबर और कीचड़ लग गया। गनीमत रहा कि वह अपनी बाईं तरफ गोबर के ढेर में गिरा। अगर वह दाईं तरफ गिरा होता तो पिकअप वाला उसके सर के ऊपर से ही पिकअप चढ़ाकर उसकी जान ले लेता। पीछे से जा रहे एक राहगीर ने जब इस स्थिति को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत उन्होंने घायल व्यक्ति को मदद किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया और इसकी जानकारी गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी को दी। इस दौरान घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले ने ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए।
18: सर नमस्कार।
19: नमस्कार,
18: ट्रैफिक से बोल रहे हैं ना सर?
19: हाँ बोलिए
18: सर। आपको एक सूचना देना था, अभी आधे घंटे पहले की बात है। ये जो गोपालगंज से थावे की तरफ जो रोड आ रही है, ध्यान पूर्वक सुना जाएगा सर, उसमें जो तुरकहा पुल से थोड़ा सा पहले एक टर्निंग पॉइंट है, उसके ठीक बाईं साइड में एकदम रोड से सटा हुआ गोबर का अलाव वहां किसी ने लगाया है, रखा है। अच्छा। मेरी गाड़ी पीछे थी, सामने एक जो सज्जन थे उनकी गाड़ी उस गोबर के जो गोबर है ना वो पूरा पीछे के ऊपर है लगभग, तो उस पर स्लिप किया, पीछे वाला आदमी फेंका गया तो उसको ज्यादा चोट नहीं आई, मतलब हल्के फुल्के में निपट गया। तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उसको देखा जाए और रोड के किनारे जितने लोग भी इस तरह के जो है ना सामान रखे हुए हैं उसको जो हटाया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना।
19: आपका शुभ नाम क्या हुआ?
18: मैं शकील अहमद हूँ।
19: शकील जी,
18: सेमरा पूरा, मैं पूर्व वार्ड सदस्य भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ।
19: वार्ड परिषद है, आपको थोड़ा सा कानून का ज्ञान होना चाहिए, होगा हमको पूरी उम्मीद है। ये चीज मामला एसडीएम साहब के संज्ञान में लाइए, रोड इंक्रोचमेंट सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी जो आज के डेट में 152 बीएनएसएस है, दैट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सब डिविजन मजिस्ट्रेट। हम सिर्फ यातायात देखते हैं, यातायात में जो भी रोड की समस्या, एक्सीडेंट हो जाए या जाम हो जाए, कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए या आपकी गाड़ी का कुछ फ्री हो जाए, उसको देखेंगे। अतिक्रमण हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है।
18: सर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मैं जो सूचना दिया हूँ
19: एकदम दिए हैं इसको,
18: तो अगर थोड़ा सर आप भी आवागमन करते होंगे तो आप वो देख लीजिए, उस वो गोबर जो है ना गीला हो गया है, जिसके वजह से उनकी बाइक जो है ना फिसल गई। अगर वो बाएं तरफ नहीं फिसल गया, अगर दाहिने तरफ फिसले होते तो सर किसी की जान भी जा सकती है।
19: ये आपने सूचना हमें दी, उसके लिए हम आपका बात सुन रहे हैं, थोड़ी फोन रख दिए
18: जी सर।
19: हाँ लेकिन ये इफेक्टिव होगा अगर आप एसडीएम साहब को सूचना देंगे।
18: ठीक है, तो कल मंडे है, मैं कल रिटर्न कर दूं।
19: जरूर जरूर,
18: क्योंकि सर ये तो मेरे साथ भी हो सकता था।
19: हाँ जरूर,
18: सर आपके सूचना के लिए बता दूं, वहाँ से जब आप ढाला पार करिएगा ना सर, तुरकहा ढाला,
19: अच्छा,
18: उसके बाद आप 2 किलोमीटर चलिएगा तो एक आदमी बालू गिट्टी का दुकान किया हुआ है, वो मुकेरी टोला जो क्रॉसिंग है उसके ठीक समीप, वो उसका भी जो है ना बालू पीच के ऊपर ही गिरा के बैठा है, वो व्यवसाय कर रहा है।
19: ये सब सब सब
18: हाँ, मतलब एक कोई जांच टीम होती जो ये 5 किलोमीटर का भौतिक निरीक्षण कर लेती।
19: एसडीओ साहब तो आप आवेदन दे दीजिए, जांच करा लेंगे।
18: हाँ मैं कल ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जनमानस के लिए।
19: जरूर जरूर,
18: ठीक है सर, धन्यवाद। फिर भी सर एक थोड़ा सा आप भी अपने स्तर से थोड़ा सा देखा जाए सर। थैंक यू।
17: इधर बिशंभरपुर के मटिहनिया बांध पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए दो मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त किया। इस दौरान एक गाड़ी से आ रहा शराब तस्कर फरार हो गया और दूसरी मोटरसाइकिल से आ रहे एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र इंजीनियर निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा पर पूरे बिहार के लिए निकल चुके हैं। इसको लेकर गोपालगंज के जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पटेल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के शिल्पकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के शिखर पर पहुंचाया है। उनके पुत्र निशांत कुमार उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार के चंपारण की पावन धरती से, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, वहां से निशांत कुमार संघर्ष, समर्पण, सेवा और सद्भाव के संकल्प के साथ बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। उनके साथ बिहार प्रदेश जदयू यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष विधायक उमेश सिंह कुशवाहा भी और पार्टी के तमाम गणमान्य नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सभी को प्रमोद कुमार पटेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी। जिले के मॉडल सदर अस्पताल में फिलहाल दो दिनों से हुई बारिश के दौरान भारी जलजमाव देखने को मिला, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। हाल ही में करोड़ों रुपए लगाकर जिले का मॉडल सदर अस्पताल बनाया गया है, परंतु यहां हल्की बारिश में ही जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। यहां जल निकासी की समस्या अब तक नहीं सुलझाई गई। पहले भी जलजमाव से सदर अस्पताल जूझ रहा था और अभी भी मॉडल सदर अस्पताल बनने के बाद भी यहां परिसर में जलजमाव से मरीजों को परेशानी हो रही है। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर हाई स्कूल के पास ब्रह्म स्थान के समीप जहीर खान पिता सैफुद्दीन खान को गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से धमकी भरा ऑडियो संदेश भेजे जाने से मना करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया तथा गोली फायरिंग की गई। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस इस मामले में तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक निरीक्षण करने के साथ ही साक्ष्य संकलन के लिए FSL टीम को सूचित किया। घटनास्थल से एक गोली का खोखा भी बरामद किया गया और मारपीट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध हथियार की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन करते हुए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल विधि व्यवस्था वहाँ सामान्य है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल लूट कांड में भी 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। अलग अलग मामलों में हुई कार्रवाई में 25 लोगों को भेजा गया जेल। 5,639 शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग को हुआ संदेह। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: चाहते हो मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में?
21: क्यों, क्या हुआ है?
20: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
21: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
20: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
21: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
22: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
23: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
22: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
23: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
22: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
23: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
24: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
22: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH-27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-42-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: वीकेंड क्लासिक पर गात हैं आप और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक नायाब एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें मधुबाला जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन यादें आपके साथ बांटी जाएंगी और कुछ बड़े ही अनोखे गाने मधुबाला जी की फिल्मों के आपको सुनाए जाएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि भाई एक लम्हा ऐसा भी आया जब मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब की मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ रही थी और इसी बीच एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी वजह से कोर्ट रूम ड्रामा हुआ, कोर्ट केस हुआ और दिलीप साहब और मधुबाला जी की मोहब्बत जो है वो जरा चटक गई, टूट गई। क्या था वो पूरा मामला ये मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा और साथ ही कुछ बेहतरीन गाने हैं, लेकिन उससे पहले मेहरबान आपके लिए हावड़ा ब्रिज से आइए मेहरबान।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: और हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूंगा
2: सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। और इस एपिसोड में कुछ बेहतरीन दास्तानें मधुबाला जी की जिंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटी जा रही हैं। मधुबाला जी की फिल्मों के बेहतरीन गाने भी आपको सुना रहा हूं, लेकिन जरा भी ले चलता हूं आपको उस वक्त में जहां पर एक अजीबोगरीब कोर्ट केस हो गया। जी हाँ, बी आर चोपड़ा साहब फिल्म बना रहे थे नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी हीरो और हीरोइन थे, और मामला कुछ इस तरह से अटका कि बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि मेरी फिल्म की शूटिंग जो है वो आउटडोर होगी। अब आउटडोर का मतलब होता है कि बाहर जाके, शहर से बाहर जाकर शूटिंग होगी, ये नहीं कि भाई आउटडोर एनवायरनमेंट में, पर बाहर जाके। दिलीप कुमार साहब तैयार थे, मधुबाला जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, लेकिन मधुबाला जी के वालिद उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाएगी लड़की, लड़की यहीं मुंबई में शूटिंग करेगी, बाहर नहीं जा सकती। अब इस बात को लेकर जरा मामला फंस गया। बी आर चोपड़ा साहब ने कोर्ट केस किया कि भाई हमारी हीरोइन जो है वो साथ नहीं दे रही और वो शूटिंग के लिए नहीं आ रही, और दिलीप कुमार साहब को बतौर गवाह प्रस्तुत किया गया कि भाई ये हमारे हीरो हैं और मधुबाला हमारी हीरोइन है और ये सारी बातें तय थी कि बाहर जाके शूटिंग होगी। मधुबाला जी ने कहा कि भाई मैं तो ये शूटिंग नहीं कर सकती, पर दिलीप साहब जो हैं वो प्रोड्यूसर से बंधे हुए थे और ये कहा गया कि भाई हाँ ये शूटिंग बाहर होनी थी और इस बारे में सारी बातें हुई थी, लिहाजा कोर्ट ने फैसला जो है बी आर चोपड़ा साहब के हक में सुनाया। मधुबाला जी पर केस भी हो सकता था और सारी बातें भी रहीं, पर बाद में वो मामला वापस ले लिया गया क्योंकि हीरोइन बनी विजयंती माला नया दौर की। पर साहब ये कोर्ट केस इस तरह से सामने आया कि वो जो मोहब्बत थी दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी के बीच में वो जरा चटक गई, टूट गई, और उसी वक्त उसी दौरान फिल्म मुगले आजम की भी शूटिंग भी चल रही थी और इनके रोमांटिक सीन्स थे, रोमांटिक सीन्स भी पूरे हुए, फिल्म भी पूरी हुई, पर वो मोहब्बत मुकम्मल ना हो पाई। अब फिल्म मुगले आजम का एक गाना है, मैं चाहता हूँ हम इसे ज़रूर सुने और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किशोर कुमार साहब मधुबाला जी की ज़िंदगी में आए और जानते हुए बूझते कि भाई इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, उसके बावजूद शादी भी हुई, ये सब किस तरह से मुमकिन हुआ और क्यों हुआ, ये सारी बातें बहुत जल्द आपके साथ बांटूंगा सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: नायाब गाने, कुछ बेहतरीन किस्से आज इस एपिसोड में मधुबाला जी की जिंदगी से जुड़े आपके साथ बांटे जा रहे हैं। जरा चलते हैं उस वक्त में जहां पे ये पता चलता है कि मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब के बीच में जो भी मोहब्बत थी वो कट सी गई थी, चटक सी गई थी। और इस बीच किशोर कुमार, जो कि खुद अपनी बीवी से दूर हो गए थे और तलाक हो चुका था, वो मधुबाला जी की जिंदगी में आए। बात यहां तक पहुंची कि भाई अब जरा शादी की जाए, पर मधुबाला जी के वालिद साहब ने कहा कि देखिए किशोरदा, ऐसा है

मधुबाला जी ये दुनिया छोड़ के जरूर चली गई और किशोरदा की जिंदगी एक बार फिर खाली हुई, लेकिन ढेर सारी यादें, ढेर सारी बातें जो हैं उस शादी से जुड़ी आज भी हम एक दूसरे से बांटते हैं। ये बात आपके साथ बांटिए, गाना भी बेहतरीन आपको सुनाऊंगा और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि कितनी प्रोफेशनल थी मधुबाला जी। मुंबई की बारिश बड़ी मशहूर है साहब, एक बार तो साइक्लोन भी आ गया, 1948 की ये बात है, और तब भी मधुबाला जी टस से मस ना हुई। ये किस तरह से मुमकिन हुआ था ये बात आपके साथ जरूर बांटी जाएगी।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

0: मेरा या दुई त्रान चार पांच पांच रुपया बारह आना पांच रुपया बारह आना।
1: इस एपिसोड में मधुबाला जी की फिल्मों के बेहतरीन गाने आप सुन रहे हैं और कुछ बड़े ही अनोखे अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूँ। ये बात तो जग जाहिर है और बहुत लोगों को पता है कि मधुबाला जी इस तरह की अभिनेत्री रहीं कि उन्हें अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं था। भले ही सामने बड़े से बड़ा हीरो हो और मधुबाला जी को किसी बात पे हंसी आ जाए तो वो हंसती रहती थी। हीरो परेशान रहता था कि भाई क्या चक्कर है, कैसी हीरोइन है, मेरे चेहरे पे हंस रही है और इस तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन एक बात मशहूर मारूफ फिल्म मेकर शक्ति सामंता साहब ने एक बार बांटी कि 1948 का वक्त था और फिल्में बन रही थी। जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मुंबई की बारिश बड़ी मशहूर है, बहुत बारिश होती है साहब। और एक मरतबा हुआ यूं कि ज़रा साइक्लोन वगैरह आ गया और फिल्म इंडस्ट्री छुट्टी पर चली गई और उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी भी नहीं, पर मधुबाला जी समय पर रिपोर्ट कर रही थी, वो शूटिंग के लिए आ रही थी, भले ही शूटिंग के लिए कोई और आया हो या ना आया हो। और ये बात देखने के बाद शक्ति सावंता को लगा कि वो ये हीरोइन है जो वक्त की पाबंद है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन ये सामने आ जाती है और कहती है मैं शूटिंग करूँगी। ये बातें भी सही हैं कि वो हीरो की शक्ल देख के कभी कभी हंस देती हैं और अपनी हंसी पे इनको बड़ा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अपने प्रोफेशनलिज्म पे, समय की पाबंदी पर इन्हें बड़ा कंट्रोल है साहब। इस तरह की अभिनेत्री, इस तरह की शख्सियत रहीं मधुबाला जी। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तानें आज इस एपिसोड में उनकी जिंदगी से जुड़ी जो हैं वो आपके साथ बांटी जाएंगी। और साथ ही ये भी मैं आपके साथ बांटूंगा कि जब दिलीप साहब की शादी हो गई सायरा बानो जी से, उसके बाद एक ऐसा लम्हा भी आया जब इन दोनों की मुलाकात हुई, क्या बातें हुई मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब के बीच, बहुत जल्द आपको सुनाऊंगा सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065775।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: वीकेंड क्लासिक पर कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ बड़े ही अनोखे गाने मधुबाला जी की फिल्मों के मैं आपके साथ बांट रहा हूँ।

0: फूल सा दिल मेरा कुचल कुचल गया, चांद रात तुम हो साथ क्या करे अजी, अब तो दिल मचल मचल गया।
1: दिल का एतबार क्या क्या करोगे जी कल जो ये बदल।
2: वीकेंड क्लासिक पर कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ बड़े ही अनोखे गाने मधुबाला जी की फिल्मों के मैं आपके साथ बांट रहा हूँ सब। और ये बात मैंने कुछ वक्त पहले भी आपके साथ बांटी थी कि भाई यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी के प्रेम संबंध जो हैं वो मीडिया में भी थे और जब ये टूट गए तब भी चर्चा में रहे। ये बात भी आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि दिलीप साहब ने काफ़ी वक्त तक इंतज़ार किया कि वो किससे शादी करें और कब शादी करें, और फाइनली दिलीप कुमार साहब की शादी हुई सायरा बानो जी से, जो उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी और उम्र में बहुत छोटी थी। अब शादी तो हो गई। इस बीच मधुबाला जी को भी ये इतला की गई कि भाई यूसुफ साहब ने शादी कर ली है। मधुबाला जी ने थोड़ा इंतज़ार किया और उसके बाद एक फ़ोन घुमाया और कहा कि भाई मैं यूसुफ साहब से मिलना चाहती हूँ कि एक बार तो कम से कम वो आके मुझसे मिले। और ये वो वक्त था जब मधुबाला जी जो हैं वो बहुत बीमार थी और सभी जानते थे कि आज नहीं तो कल वो गुजर जाएंगी। इतनी बड़ी ज़बरदस्त हीरोइन, इतनी खूबसूरत हीरोइन, वो ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी, ये सभी को मालूम था, इस बात से सब वाकिफ थे। दिलीप साहब से कहा गया कि आप उनसे जाके मिलें, तो ये गए मिलने के लिए और एक लाइन मधुबाला जी ने बोली और उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई और वो आखिरी मुलाकात थी। दिलीप साहब पहुँचे मधुबाला जी के यहाँ, दोनों आमने सामने आए, एक अरसा बीत चुका था इनकी मुलाकातों को, और ये जब मिले तो मधुबाला जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे पता चला है कि आपकी शादी हो गई। और मुगले आज़म में ये अनारकली थी और दिलीप साहब शहजादे थे, सलीम का किरदार निभाया था। तो मधुबाला जी ने एक बात बोली और कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, और फिर वो मुस्कुराती। दिलीप साहब और वो आमने सामने ज़रूर बैठे, फिर इसके बाद फिर कोई बात हुई नहीं और बड़े ही अलग अंदाज में मधुबाला जी जो हैं ये दुनिया छोड़ चली गई। एक तरफ दिल टूटा हुआ था, दूसरी तरफ शादी हो चुकी थी किशोर कुमार साहब से, और जब पता चला कि सायरा जी यूसुफ साहब की ज़िंदगी में आ गई हैं तो बस यही कह सकें कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह का मिजाज रहा उनका। बड़ी अनोखी दास्तानें इस हीरोइन की आज आपके साथ बांटी हैं और कुछ बेहतरीन गाने भी आपके साथ बांट रहा हूँ।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पर छेट दबनाक डूबा के मर जाए।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: जी तनी अपना बाबू जी से बात करी ना।
1: रुका लगाओ तनी।
0: हाँ लगाई ना।
2: हो पप्पा हम बियाह कई ले लियो।
3: का बियाह कई ले लिए? हमरा ले बताइले।
2: तू बियाह कई ले तो हमसे बताइला, नया बताइला तो हम कह के बताई।
3: अरे बोकावा तो कुछ दहेजो मिल ही है रे।
2: दहेज नहीं जे घंटा लिया।
3: आ ससुरा।

0: अरे एक बार लास्ट प्रयास करो।
1: रुक जा, एक बार और लगावा है। ए बाबजी हो,
2: अरे लड़को हो गई का रे?
1: हाँ हो गई।
2: अरे अभी तो 2 दिन पहले कहता रे कि ब्याह कोई नहीं है।
1: अरे जिया के ऑफर में डाउनलोड कर ले लाई बाबजी।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैम मायर MP से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान ने क्या बोले, तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से जान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम, दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: यही है कि गेहूं के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे वो सारी बदरिया,
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमे कॉल के जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: मैं अहमद अली सर, आवाज नंबर 1 है।
1: जी, का हाल चाल बा अहमद जी?
2: ठीक बा जी, अपन बताई, बारिश में कैसा लागत है?
1: अरे का बताई कैसा लागत है, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला लाटे 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
2: भाग मनाई की पहुँच गयी नहीं है, न तो आइयो ना कोई दिन
1: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
2: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है, लेकिन उठानी है ना।
1: अरे जैसे आके चालू कर ले रही, अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
2: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता, पूछे मोमेंट से
1: ना। ना जुलूम नहीं होते, मैं चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल भाई की जाए।
2: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
1: ना
2: लागल है। 126 बार डायल कैले बनी।
1: अच्छा अच्छा, चले लागल बता दी।
2: आज गाना तो सुनवा ली नजायज फिल्म से, बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाबे के बाद सबसे पहले के कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
1: आज बाजी, आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
2: ठीक बा
1: जी,
2: चलिए शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्कार सोनी जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
6: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
5: भैया
6: तो क्या हो रहा था अभी?
5: अभी तो घर पर आए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
6: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
5: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
6: शादी वाला और सुनवाना भी है
5: रेडियो रिमझिम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: जी कुमारी गोपालगंज से।
0: जी कैसे हैं खुशी जी।
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी।
1: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको।
1: सुनना बोल सका है।
0: कौन सा गाना।
1: भोजपुरी गाना बोल सका है।
0: जी बिल्कुल बोल सकता है भोजपुरी गाना।
1: लाए तो माई हमारे मारे लगी हो।
0: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना।
1: हाँ यही।
0: अच्छा, और सुनाना भी है।
1: हाँ, सिरजी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडियो रिलीज सुने सभी को।
0: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी।
1: हाँ कर दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर एक है।
5: जी का हाल चाल अहमद जी?
6: ठीक बस जी, अपन बताई बारिश में कैसा लागता?
5: अरे का बताई कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटन 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
6: भाग मनाई की पहुँच गए नहीं है, आइयो ना कोई दिन
5: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
6: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
5: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
6: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मोमेंट से।
5: ना ना जुलूम नहीं होते, ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
6: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
5: ना
6: लागल है। 126 बार डायल कर ले बनी।
5: अच्छा अच्छा चले लागल बता दी।
6: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनावे के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और ये भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
5: आज बाजी, आज शाम के 5-7 के बीच में आई।
6: ठीक बा
5: जी,
6: चलिए शुक्रिया
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हाँ संग जी, हमारा संग एक्शन होता का है।
4: जी जी, का होता थे बताई।
5: फोन उठा के कट गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम।
4: ना जी, सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क साथ फंसाता थे।
5: हम जाने की हमारे संग होता है, कभी वो घड़ी घड़ी
4: ना ना, आज काफी भयानक वाला बारिश होता है। आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश हो।
5: हम नहीं कहता अभी नीचे हो
4: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला रहता महीने, जैसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश भारती बात करता नहीं ना।
5: हाँ जी हाँ जी
4: जी,
5: तब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, आंधी पानी होइत रही।
4: ओ दिन तेहू जी भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
5: हाँ शाम के पूरा टेंट समझ अपना लोग के लागल रहे, उधिया गई
4: सब लेके चल गए।
5: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा, तब तक पतल उतल में उधिया
4: बोला की ना खाए दे आज
5: ना खाए मिलल।
4: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
5: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहे, एक फीट तक पानी लगे रहे, तो मैं अभी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
4: ना खा पाई है। सही बात बा।
5: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम्स होला ना ओकरा में पानी देखते देखते जो रहे ओकरा में पानी भर गए।
4: वही बात बटे, खाना भी बर्बाद हो गए।
5: हाँ।
4: जी तो बता दी गाना कौन सुने के बा।
5: अच्छा सुने के चाहत रहे यहाँ पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है।
4: जी और सुनवाए के भी बा।
5: हाँ सुनवावे के पूरा रेडियो काल फैमिली बा, रउआ बानी हम बानी। अरे घड़ी तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न, अटक गई बड़न, जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
4: अच्छा अच्छा, श्रीमती जी ने की आवेदन का।
5: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो, हमारा संगे कब रहो।
4: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना रखी।
5: हाँ तो अब बड़न की बार बार हमारे कहे चले जाए बोलन,
4: तब तक लड़ाई होके के बात बटे।
5: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन समझे खदल बने की तू हमारे संगे भाई मत रह।
4: चली बढ़िया कैले बनी ऐसा बात बता।
5: हमारा संग रहो, हम अपन जहाँ बानी तहाँ ठीक बनी, हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली है।
4: जब काम पड़ी तब मिल ली है, ठीक
5: है। हाँ काम पड़ी तब मिल ली
4: है,
5: तब मम्मी के बिना मतलब की हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल
5: उनको मेरा भी कहना मिलेगा।
4: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
6: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथोड़ा से।
2: जी कैसे हैं मन्नान जी?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
2: जी जी बिल्कुल हो गया है।
1: हो गया कि हो रहा?
2: नहीं नहीं हो गया है
1: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
2: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
1: तो गाना सुना दीजिए मैडम।
2: जी
1: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
2: जी
1: हाँ, तो गाना हमको वही सुनना था।
2: और सुनवाना भी है?
1: और सुनवाना है क्या है? वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोग को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है।
2: जी
1: ना, इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग लो सुनेंगे।
2: तो प्ले करे गाना?
1: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, हम ज्यादा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 94.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा, चलिए आ गए,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: हाँ, और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है।
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक। ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने को।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
8: नाम मनोज कुमार
7: जी,
8: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
7: कैसे हैं?
8: ठीक हैं।
7: तो क्या हो रहा था?
8: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
7: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
8: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
7: अच्छा अच्छा,
8: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है। जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
7: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
8: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
7: अच्छा,
8: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम। गाना हमको सुना दीजिए आज
7: जी,
8: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
7: सुनवाना भी है?
8: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिम के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए।
7: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू
4: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: जी रियाज अंसारी सिवान।
4: जी जी, क्या हालचाल है?
5: हालचाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
4: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
5: हाँ, मैं बन गया।
4: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
5: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
4: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
5: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, माँ करेंगे, माँ करेंगे।
4: चलिए, तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
5: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया था आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर हाँ। मसाला रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, अब बारिश भी रात को ही होती है। दिन में कमाओ, रात को सो जाओ।
4: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
5: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
4: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
5: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव की। वहाँ
4: चलिए, तो गाना कौन सा सुनना है?
5: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
4: जी। और डेडिकेट भी करिएगा।
5: हाँ करेंगे, आकाश सैनुल्ला मुस्कान और शहजादी।
4: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
5: और एक बात, कुछ बोल सकते हैं शायरी वगैरह? क्योंकि
4: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
5: नहीं, नहीं, नहीं,
4: नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
5: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे सैड सॉन्ग के साथ में एक भी बज जाए। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद रहते हैं हमेशा मुस्कुराने।
4: जी जी,
5: बस इतना ही, थैंक यू।
4: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।
5: थैंक यू मैम,
4: वेलकम।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पर

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्म लोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गऊएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।